0: Meanwhile, here's some breaking news coming in from West Bengal. Let's take you through it. We're tracking the latest updates coming in at this hour. We're understanding that there has been an FIR registered against TMC Member of Parliament Abhishek Banerjee. Remember that he's the Member of Parliament from the Diamond Harbour constituency. The latest that we're tracking is that Abhishek Banerjee has now been booked for inflammatory comments, is what we're learning so far. There's been a case filed against TMC Member of Parliament Abhishek Banerjee over remarks ahead of the polls. Now, the charge is that he incited riots and spread hatred. So there's been a case that's been filed against the TMC Member of Parliament, Abhishek Banerjee. There's been an FIR that's been registered. He's been booked for inflammatory comments, is what we're learning so far. The case has been registered of his comments ahead of the polls. The charge states that he incited riots and spread hatred. My colleague Hrithik is with us on the broadcast. Hrithik, walk us through the details. We're understanding that there has been an FIR that's been filed against TMC Member of Parliament Abhishek Banerjee.
1: Well, what we are picking up at this point in time, police on Friday registered an FIR against TMC MP Abhishek Banerjee under non-bailable sections for his remarks against Union Home Minister Amit Shah at an election rally last month. Remember, what we are also picking up, that the FIR was registered on a complaint lodged by one Rajiv Sarkar, who alleged that the TMC National Chief Secretary issued threats to Shah on and other BJP top leaders. The complaint was registered just the day after the verdict on 5th May. The complaint was registered with Bidhanagar Police Commissioner. Now it is being treated as an FIR, and the content of the FIR says that Abhishek Banerjee during several time poll-related campaign threatened Amit Shah, and that's with his derogatory remark. So it has come as a shocker for the Trinamool Congress Party, though we are yet to get any clarifications or the reactions from the Trinamool Congress Party. Remember, the SIR says that the police said that the FIR has registered under BNS Section 196, 151, 153, and several other non-bailable sections. These are all serious allegations against Abhishek Banerjee. What we know that since the Shubhendu-led government came into power, we see that several actions are being taken against TMC Neta and ministers. Several are being summoned. Some places are being raided, which are related to TMC leaders. Now, actions and serious charges have been leveled against TMC's top leader, Abhishek Banerjee. Back
0: Absolutely.
1: To you.
0: Absolutely, you rightly mentioned there seems to be an FIR that's been registered against TMC Member of Parliament, Abhishek Banerjee. Thank you so much for joining us and sharing those updates with us. Well, let's take you to Karnataka at this point. Well, the Tamil Nadu thriller has now ended. In Keralam, the Congress has chosen its chief minister, but the focus has now shifted to another Congress-ruled state, Karnataka, where the Sarkar Nataka seems to be entering season two. On DK Shivkumar's birthday, his camp launched a fresh campaign with posters and a specially designed next chief minister cake, signalling his renewed bid for the chief minister's post and even intensifying the leadership tussle within the party. While Siddaramaiah had earlier thwarted DKS's halfway mark ambition, reports say that the deputy chief minister now wants a new cabinet under his leadership and enough time rather to prove himself, even as the chief minister pushes for Greater Bengaluru Authority civic polls, which DKS is now resisting. The big question remains, can the Congress High Command delay a decision any longer?
2: We'll have to give time for the High Command, because everybody was busy in elections. So now that elections are over, this is the time to take decision. They will take decisions.
3: But what do you think, sir? Like, you know, why is it getting this prolonged as well? Of course, when the election were there, sir, 3 years, 2.5 years, you had many leaders from the party coming out saying, okay, 2.5 years is over now. We see some sort of a change.
2: I don't know whether this arrangement of 2.5, change of chief minister, we don't know whether that there was agreement or not. Our government is strong in the state and they are running the show. And if there is any reshuffle of the government or anything to be done, you know, it is what the High Command is seized of the matter. I don't think, you know, you could have hurried up that, you know, they will quietly take a decision.
0: Well, let's turn our attention to more updates coming in at this hour. Well, the Madhya Pradesh High Court has given a verdict stating that the disputed Bhotshala temple, the Kamal Maula Mosque complex in Dhar, is a temple dedicated to Goddess Saraswati. Now, the court urged the Muslim community to approach the state government for the allotment of separate land in the district for the construction of a mosque. While Hindu side devotees celebrated, the Muslim side will be moving to the Supreme Court to challenge the verdict. Now, the Muslim side claims that it is a 700-year-old mosque and hence the verdict should now be cancelled. But the Hindu side claims that it is a temple belonging to Goddess Vagdevi.
4: फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हम हमारे पास पूरा डिटेल फैसला आया नहीं है तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे लेकिन हाँ डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक ज़मीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके और उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके एएसआई के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया है
5: ऐसा ही सर्वे से अवरेल जी मेरे साथ में हैं सर एक लंबा सर्वे किया गया और सर्वे के साथ साथ ये कहा गया था कि पहले मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि सर्वे रिपोर्ट झूठी है एक पक्ष की रिपोर्ट
6: देखिए जो हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे एएसआई एक एक्सपर्ट बॉडी है सेंट्रल बॉडी है और एक्सपर्ट्स द्वारा एक एक एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी सात मेंबर्स की जैसा कि कोर्ट के आदेश में था और एक लंबा चौड़ा टीम के साथ इसका सर्वे किया गया था जो लगभग 90 दिन के ऊपर चला और बिना ब्रेक के ये सर्वे चला कंटिन्यूस चला जिसके कोर्ट के आदेश अनुसार जो जो पहलुओं पे सर्वे करना था स्टडी करनी थी इन्वेस्टिगेशन करना था वो किया गया और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी उस पर जो जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे अन्य पक्षों द्वारा
7: ये तो एक मौकरी बन चुका है मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे हम उम्मीद करते हैं कि जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा
8: आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द जजमेंट पास बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो कमाल मौला मस्जिद पे उन्होंने आज जो जजमेंट दिया मैं समझता हूँ ये एरोनियस है इसके अंदर बहुत सी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए ये जजमेंट उन्होंने ऐसा के पास कर दिया फिलहाल जो हमको जानकारी मिल रही है वो यही है कि इस बुनियाद के ऊपर जजमेंट दिया एएसआई और गवर्नमेंट के साथ मिली भगत में काम कर रहा है वो वहां के लोगों ने ये लगाया है कि एएसआई हमारे को पूछता भी नहीं था किस तरह सर्वे करना बस अपने हिसाब से करके डाल दिया रिपोर्ट उन लोगों ने वहां पर तो अभी देखिए सबको अपना अपना रीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है मुझे यकीन है जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा तो जो इसमें एरर हुआ है वो एरर हट जाएगा और इंसाफ इंशाल्लाह ताला हमको मिलेगा
9: ये जो रिपोर्ट आई है ये कुछ डेढ़ साल पौने दो साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था जमीतुल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था तो बस यही कहना है इसको अब वो तो अभी आ जाने दीजिए वो उसका वो पढ़ेंगे उसके बाद
10: लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया
9: हाँ वो आ जाने दीजिए
11: मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सुरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाए मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सुरोधार्य करता हूँ
12: ये मस्जिद कमाल मौला का केस बहुत पुराना है और काफी टाइम से ये विवाद चल रहा था एएसआई को देने के बाद से विवाद चल रहा है और आज हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया जिसमें उन्होंने एएसआई की को आधार मानते हुए एक दूसरे पक्ष को देने का कहा है तो जो पक्ष लड़ रहा था उस पक्ष की और हमारी सबकी बात हो गई है और हम लोग सब मिलकर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे नहीं अभी जब हम उस फैसले को अभी हम तस्लीम नहीं कर रहे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अभी हमारे पास ऑफर है अभी अभी हमको गुंजाइश है ना, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब तक नहीं आता तब तक मैं समझता हूँ कि प्रशासन को भी हैंड ओवर नहीं करना चाहिए और शांति भी लोगों को बनाना चाहिए।
13: तस्वीरों में देख सकते हैं आप, धार में होली हो रही है और एक दूसरे पे गुलाल लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं आज, और बसंत पंचमी मानो आज मन रही। क्या बसंत पंचमी आज है?
14: आज हमारे हिसाब से तो बसंत पंचमी से भी बड़ा पर्व है। आज माँ वाग देवी सरस्वती के मंदिर को जो मुक्ति मिली है उससे पूरा धार तैयार, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत बहुत खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है।
13: होली है क्या?
15: होली है, दिवाली है, सब है,
16: होली दिवाली सब है, सर्व हिंदू समाज
13: ये बोल लो, लोग हैं जो गुलाल उड़ा रहे हैं और होली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी धार की सड़कें हैं, ये वो होली के रंग में सराबोर हो गई है और नारे लग रहे हैं तमाम, देख सकते हैं आप। और ये पूरा ना सिर्फ गुलाल उड़ाया जा रहा है बल्कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, वो एक दूसरे पे गुलाल उड़ा रहे हैं और आज होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं आमतौर पर ये रंग जो है होली पर देखने को मिलते हैं, और लेकिन उसके पहले हर कोई इस पूरे रंगों को जो है ना सिर्फ सराबोर है बल्कि एक दूसरे को रंगों में सराबोर किए हुए हैं। और ये देख सकते हैं आज होली बन रही है, होली बन रही है,
15: होली बन रही है, जय जय सियाराम।
13: देख सकते हैं और ये होली के रंग में रंग चुके हैं पूरा पूरा धार, और पूरी सड़कें आप देख सकते हैं धार की यहाँ से लेके बाहर तक रंगों से सराबोर हैं। गुलाल खेला जा रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि धार के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला भूशाला को लेकर आया है। रिजवान खान के साथ अजय शर्मा, NDTV धार।
0: Well, let's bring you more updates coming on this. Remember that the Madhya Pradesh High Court declared the disputed Bhotshala Kamal Maula Mosque site in Dhar as a temple. The High Court even cancelled the 2003 Archaeological Survey of India order allowing Muslims to offer Friday prayers on the Bhotshala premises. Let's also take you through what the Archaeological Survey of India's findings were at the place. Remember that the Archaeological Survey of India has gone on to say that there were about 1710 historic relics which have been unearthed. This is what they've said. These are some key findings of the Archaeological Survey of India on which the court judgment is based. They've said that there have been 94 sculpture fragments of Hindu deities that have been found from the sites. Apart from this, images of Lord Ganesh and Brahma have also been found. Remember that there are reports that even go on to indicate that this could be a Saraswati temple. Apart from this, they've also said that images of Narasimha and Bhairava were also found at the temple. So several, of course, indicators from the Archaeological Survey of India that go on to state that this could be a Hindu temple. There were even motifs of elements, lions and horses that were also found. 106 pillars appear as parts of the temple, and there are about 82 pilasters which have appeared as parts of the temple. The structure is said to have dated to the Paramarada dynasty, and the ASI conclusion in this case stands that the structure has been built on a temple. Well, let's turn our attention to more updates coming in at this hour. While Prime Minister Modi's pen mart appeal is rippling across the country, with several states and ministries encouraging everyday frugal choices to rally the nation to meet the global crisis. From walking to the secretariats to flying economy to even encouraging the use of public transport and bringing back the work from home culture, the movement is moving beyond optics to implementing incremental change. Now, this has indebted the opposition in questioning the government's management of the crisis, with them even alleging that the burden of it is being passed on to the citizens. The BJP in its defense has argued that this is a global crisis, which the government has handled well with minimal impact on the citizens. On that note, stepping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: के साथ साथ ये कहा गया था कि पहले मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि सर्वे रिपोर्ट झूठी है, एक पक्ष की रिपोर्ट है।
1: देखिए, जो हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे, ASI एक एक्सपर्ट बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, और एक्सपर्ट्स द्वारा एक एक एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर्स की, जैसा कि कोर्ट के आदेश में था, और एक लंबा चौड़ा टीम के साथ इसका सर्वे किया गया था जो लगभग 90 दिन के ऊपर चला, और बिना ब्रेक के ये सर्वे चला, कंटिन्यूस चला, जिसके कोर्ट के आदेश अनुसार जो जो पहलुओं पे सर्वे करना था, स्टडी करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करना था, वो किया गया और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। उस पर जो जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे अन्य पक्षों द्वारा,
2: ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और ASI हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे। हम उम्मीद करते हैं कि जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा।
3: आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द जजमेंट पास बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो कमाल मौला मस्जिद पे उन्होंने आज जो जजमेंट दिया, मैं समझता हूँ ये एरोनियस है। इसके अंदर बहुत सी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए ये जजमेंट उन्होंने ऐसा के पास कर दिया। फिलहाल जो हमको जानकारी मिल रही है वो यही है कि इस बुनियाद के ऊपर जजमेंट दिया ASI, वो गवर्नमेंट के साथ मिली भगत में काम कर रहा है। वहां के लोगों ने ये लगाया है कि ASI हमारे को पूछता भी नहीं था किस तरह सर्वे करना, बस अपने हिसाब से करके डाल दिया रिपोर्ट उन लोगों ने वहां पर। तो अभी देखिए, सबको अपना अपना रीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मुझे यकीन है जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा तो जो इसमें एरर हुआ है वो एरर हट जाएगा और इंसाफ इंशाल्लाह ताला हमको मिलेगा।
4: ये जो रिपोर्ट आई है, ये कुछ 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था, और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है, और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीतुल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था, तो बस यही कहना है इसको। अब वो तो अभी आ जाने दीजिए, वो उसका वो पढ़ेंगे उसके बाद।
5: लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया।
4: हाँ, वो आ जाने दीजिए।
6: मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ, और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है, जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर, न्यायालय के निर्णय के आधार पर, हम अपने लिए इस निर्णय को सुरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाए। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है, और न्यायालय के निर्णय को मैं सुरोधार्य करता हूँ।
7: ये मस्जिद कमाल मौला का केस बहुत पुराना है और काफी टाइम से ये विवाद चल रहा था, ASI को देने के बाद से विवाद चल रहा है, और आज हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया जिसमें उन्होंने ASI की को आधार मानते हुए एक दूसरे पक्ष को देने का कहा है। तो जो पक्ष लड़ रहा था उस पक्ष की और हमारी सबकी बात हो गई है, और हम लोग सब मिलकर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नहीं, अभी जब हम उस फैसले को अभी हम तस्लीम नहीं कर रहे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अभी हमारे पास ऑफर है, अभी हमको गुंजाइश है ना, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब तक नहीं आता तब तक मैं समझता हूँ कि प्रशासन को भी हैंड ओवर नहीं करना चाहिए और शांति भी लोगों को बनाना चाहिए।
8: तस्वीरों में देख सकते हैं आप, धार में होली हो रही है और एक दूसरे पे गुलाल लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं आज, और बसंत पंचमी मानो आज मन रही। क्या बसंत पंचमी आज है?
9: आज हमारे हिसाब से तो बसंत पंचमी से भी बड़ा पर्व है। आज माँ वाग देवी सरस्वती के मंदिर को जो मुक्ति मिली है उससे पूरा धार तैयार, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत बहुत खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है।
8: होली है क्या?
10: होली है, दिवाली है, सब है,
11: होली दिवाली सब है, सर्व हिंदू समाज।
8: ये बोल लोग हैं जो गुलाल उड़ा रहे हैं और होली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी धार की सड़कें हैं, ये वो होली के रंग में सराबोर हो गई है, और और नारे लग रहे हैं, तमाम देख सकते हैं।

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
3: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
4: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
5: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
6: ओडिशा का है, रसगुल्ला दोनों की।
7: आई थिंक इट विल बी गुड

0: given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
2: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory.
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है.
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: no further flare-ups in that particular area where vandalism and even vehicles were, vandalized by these miscreants.
1: Absolutely, you know, Shreyasi, stay with us on the broadcast. Meanwhile, you know, one of our colleagues has also filed a ground report coming in from Asansol. Let's also take a look at that.
2: आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के आसनसोल के जहांगीरी महल्ला फाड़ी क्षेत्र में एक तनाव हो गया उस वक्त जब एक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर को लेकर विवाद पैदा हो गया और उसी को लेकर रात को कुछ युवकों ने जो है फाड़ी पर हमला कर दिया और फाड़ी के ऊपर पुलिस फाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ कर दी और स्थानीय कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और यहाँ पर बोला जाए कि पूरी अभी पुलिस पिकेट बैठा दी गई है, किसी भी अप्रिय घटना ना घटे। और जब रात को ये घटना घटी तो उस समय जो है पुलिस ने जो है आकर सिचुएशन कंट्रोल की, टीयर गैस भी चार्ज किया, लाठी चार्ज करके पूरी स्थिति को कंट्रोल किया है। फिलहाल अभी पुलिस फाड़ी क्षेत्र और इस जहांगीरी महल्ला क्षेत्र में जगह जगह पर पुलिस पिकेट बैठा दी गई है, जो केंद्रीय वाहिनी है वो भी उपस्थित है और पुलिस की जो टुकड़ी है वो भी उपस्थित है। अब पूरी सिचुएशन जो है अभी कंट्रोल में है, ऐसा ही बताया जा रहा है। आसनसोल से मोहन सिंह, एनडीटीवी।
1: My colleague Shreyasi is still with us on the broadcast. You know, Shreyasi, we just saw a ground report coming in from Asansol. I understand that there was a conflict with regards to the loudspeaker regulation by the cops. Help us understand, has the police been able to identify any of the accused in the case?
0: Well, the incident took place late last night. The CCTV footages have been gathered by the police. Action is going to follow. We have seen since Shubhendu Adhikari has taken charge of the chief minister's post here in West Bengal, action has been taken against anything that has been illegal. There have been verbal orders given to police that in any place of worship, if there is loudspeakers that are causing inconvenience to the local residents, it needs to be regulated. This is as per the Supreme Court guidelines that have been issued earlier on loudspeakers across the country, and that has been imposed with stricter action by the state government here in West Bengal now. But of course, there was tension that flared up late last night when local residents attacked the police outpost after they had requested a local mosque to regulate the loudspeakers and as part of the drive. But of course, police is yet to identify these locals and detain any of them. But the police have gathered the CCTV footages and investigation is on.
1: Absolutely, Shreyasi. So of course, tensions flared up in Asansol last night. But if I understand this correctly, then it seems to be now calm there. Thank you so much for joining us and sharing those updates with us. Meanwhile, let's turn our attention to Karnataka. Well, Tamil Nadu thriller has ended. In Keralam, the Congress has chosen its chief minister. But the focus is now shifted to another Congress-ruled state, Karnataka, where the Sarkar Nataka seems to be entering season two. On DK Shivkumar's birthday, his camp launched a fresh campaign with posters and a specially designed next chief minister cake, signalling his renewed bid for the chief minister's post and even intensifying the leadership tussle within the Congress party. While Siddhartha had earlier thwarted D.K. Shivkumar's half-a-mark ambition, reports go on to suggest that the deputy chief minister now wants a new cabinet under his leadership and enough time for him to prove himself. This comes even as the chief minister pushes for greater Bengaluru authority civic polls, which D.K. Shivkumar is resisting. So the big question remains, can the Congress high command delay a decision any longer in Karnataka?
3: I wanted to avoid this mela. So yesterday also I was out of town to Mumbai. I had been the bell ringing ceremony of the REIT of Bhagmani Developers, a big growth in Bangalore IT space. Today I wanted to avoid this and I'm going to Chittoor with all my family members. But all midnight, all of the workers were waiting. My friends, leaders, legislators, all of them, ministers were waiting. But now as of morning, I think 7 o'clock, he would have left the house. But what to do? They love, confidence, their wishes, blessings. I couldn't avoid.
4: Give time for the high command because we are, everybody was busy in elections. It is all, now that elections are over, they will, this is the time to take decision. they will take decisions.
5: But what do you think, sir? Like, you know, why is it getting this prolonged as well? Of course, when the election were there, sir.
4: No,
5: 3 years, 2.5 years, you had many leaders from the party coming out saying, okay, 2.5 years is over now. We see some sort of a change.
4: I don't know whether this arrangement of 2.5, change of chief minister, we don't know whether that there was agreement or not. Our government is strong in the state and they are running the show. And if there is any reshuffle of the government or anything to be done, you know, it is what the High Command is seized of the matter. I don't think, you know, you could have hurried up that, you know, they will quietly take a decision.
1: Well, NDTV's managing editor Shiv Varur spoke to H.T. Kumaraswamy, Union Minister. Listen in to the conversation.
6: Welcome, sir. Good to have you here on NDTV. Thank you very much for your time. My first question to you, sir, what is going on in the leadership of the Karnataka government between the chief minister and the deputy chief minister? The prime minister also said the chair there is shaking. You have also been commenting and saying that there is a big tug of war for power. What is going on? Welcome, Mr. Kumaraswamy.
7: In the Karnataka, regarding this power sharing issue, from last 3 years continuously, that is the top priority in the public, even with media also. Every day, one or the other stage, this subject only creating lot of interest to the, not only interest to the party leaders in Congress, even public also. They are really ashamed about the development from last 3 years after this government formation in Karnataka. Only their interest is who will going to become chief minister, whether this chief minister will going to resign. This is the subject from 3 years. It has taken top priority. There is no development. I don't want to criticize about the freebies of Congress government, that five guarantees, that is different subject. But in the name of freebies, these people continuously putting taxes on the common man to fulfill the treasury actually. This is going on. In our state actually regarding excise department, every year they are raising the cost of the excise department actually, that bottles. Then not only that, even electricity, they have raised the users' tariff. Not only that, it is not limited to power sector also. They have continued the land registration, everything, you know, wherever we can squeeze the people, common man. They're squeezing like anything. This is going on. There is no governance in Karnataka. We are not as an opposition in Karnataka. We are not criticizing. Congress MLAs, even Congress ministers, several times in the public platform, they are criticizing the government freebies, what they are giving to common men, what they are telling. Because of that freebies only, there is no development in Karnataka. Not only they are distributing the freebies, in the name of freebies, lot of money squeezing also is going on. For example, in Women and Child Department, the program of guarantees, one of the guarantee program, that is Guru Lakshmi Yojana.
6: Yes.
7: 2 months. Nearly 5,000 crore, what they told that in the public, they have released the amount, handed over the amount of 2,000 rupees. That 2 months, in the name of Guru Lakshmi freebies, 5,000 crore, where that money has gone? There is no accountability.
1: Well, let's now turn our attention to more updates coming in at this hour. Well, the Madhya Pradesh High Court has given a verdict stating that the disputed Bhotshala temple, Kamal Maula Mosque complex in Dhar, is a temple dedicated to goddess Saraswati. Well, the court urged the Muslim community to approach the state government for allotment of a separate land for the district for the construction of a mosque. While Hindu side devotees celebrated, the Muslim side will now be approaching the Supreme Court to challenge the verdict. The Muslim side claims it is a 700-year-old mosque and hence the verdict should now be cancelled. But the Hindu side claims that the temple belonging is to Goddess Saraswati.
8: हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हम हमारे पास पूरा डिटेल फैसला आया नहीं है तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे लेकिन हाँ डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक ज़मीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके एएसआई के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया
9: एक लंबा सर्वे किया गया और सर्वे के साथ साथ ये कहा गया था कि पहले मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि सर्वे रिपोर्ट झूठी है एक पक्ष की रिपोर्ट है
10: देखिए जो हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे एएसआई एक एक्सपर्ट बॉडी है सेंट्रल बॉडी है और एक्सपर्ट्स द्वारा एक एक एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर्स की जैसा कि कोर्ट के आदेश में था और एक लंबा चौड़ा टीम के साथ इसका सर्वे किया गया था जो लगभग 90 दिन के ऊपर चला और बिना ब्रेक के ये सर्वे चला कंटिन्यूस चला जिसके कोर्ट के आदेश अनुसार जो जो पहलुओं पे सर्वे करना था स्टडी करनी थी इन्वेस्टिगेशन करना था वो किया गया और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी उस पर जो जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे अन्य पक्षों द्वारा वो हमने उसका विश्लेषण दिया गया उसको डिफेंड किया गया कोर्ट के सामने हमने उसे क्लैरिफाई किया था कि ये एक प्रॉपर एक्सपर्ट बॉडी द्वारा सर्वे किया गया और पूरी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया
11: मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूँ
12: यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है 1947 में रही थी और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है यह तो ठीक है कि न्यायालय ने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं दोनों का ध्यान रखा गया है
13: तो एक मौकरी बन चुका है मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे उम्मीद करते हैं कि जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा
14: ये जो रिपोर्ट आई है ये कुछ 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था जमीयत उल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था तो बस यही कहना है इसको अब वो तो अभी आ जाने दीजिए वो उसका वो पढ़ेंगे उसके बाद
15: लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया
14: हाँ वो आ जाने दीजिए
16: ये मस्जिद कमाल मौला का केस बहुत पुराना है और काफी टाइम से ये विवाद चल रहा था एएसआई को देने के बाद से विवाद चल रहा है और आज हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया जिसमें उन्होंने एएसआई को आधार मानते हुए एक दूसरे पक्ष को देने का कहा है। तो जो पक्ष लड़ रहा था उस पक्ष की और हमारी सबकी बात हो गई है और हम लोग सब मिलकर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज

0: और व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी वीक नाइट्स ऑन NDTV प्रॉफिट।
2: Across the country,
0: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
3: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
4: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
5: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory.
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
8: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
9: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ CPM एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
10: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
11: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, will keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats, an election that felt more like a war.
12: Again, going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
11: We've got some breaking.
13: And beginning this bulletin at 10 a.m. with the biggest story that has been making rounds across the country. The Madhya Pradesh High Court has given a verdict stating that the disputed Bodhshala temple, Kamalmala Mosque complex in Dhar, is a temple dedicated to Goddess Saraswati. Following the verdict, people entered the Bodhshala complex to offer prayers after the High Court declared that the site was indeed a temple. The court also urged the Muslim community to approach the state government for allotment of a separate land in the district for construction of a mosque. While Hindu side devotees celebrated and offered prayers inside the Bodhshala complex, the Muslim side says it will move the Supreme Court to challenge the verdict. The Muslim side claims it is a 700-year-old mosque and says the verdict should be cancelled, while the Hindu side maintains that the site is a temple belonging to Goddess Vagadevi.
14: हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हम हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक ज़मीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को, जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे, उन सबको शामिल करके और उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सकें। ASI के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया।
15: आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो ASI का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वेश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे, और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे।
16: में हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे ही देवी देवता को पूजने से रोका जाता था, और यहाँ से नहीं हो रहा था, ये सदियों से हो रहा था। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है भारत के अंदर। लेकिन हमने 4 साल इसकी लीगल लड़ाई लड़ी, 4 साल में हमने तथ्य में कोर्ट में तथ्य रखे, और उन तथ्यों के आधार पर आज कोर्ट ने मुहर लगा दी कि हिंदू समाज
17: मूर्ति कब लाई जाएगी, कब ऐतिहासिक
16: पहले तो देखिए कोर्ट का पूरा निर्णय हम पढ़ेंगे, पहले विस्तृत निर्णय विस्तृत आदेश जो होगा तो उस पर हमको पूरा पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे हैं। अभी तक का जो हमको प्रारंभिक रूप से जो जानकारी हो पा रही है, जो कोर्ट ने बताया है, वो यह है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है, या केंद्र सरकार लंदन से म्यूजियम से माता वाग देवी की मूर्ति को ला करके यहाँ स्थापित करे।
18: देखिए ये धार के हिंदुओं का सदियों का संघर्ष का परिणाम है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से आज जो है हमसे टकराया है। मुझे लगता है कि ये जीत कई वर्षों का इंतजार के बाद और कई लोगों ने अपनी जवानी खपाने के बाद ये पाई है, और जैसा आज आदेश आया है मुझे लगता है कि ये आदेश बड़ा स्पष्ट है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर है।
19: एक लंबा सर्वे किया गया, और सर्वे के साथ साथ ये कहा गया था कि पहले मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि सर्वे रिपोर्ट झूठी है, एक पक्ष की रिपोर्ट है।
20: देखिए जो हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे, ASI एक एक्सपर्ट बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, और एक्सपर्ट्स द्वारा एक एक एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर्स की, जैसा कि कोर्ट के आदेश में था, और एक लंबा चौड़ा टीम के साथ इसका सर्वे किया गया था जो लगभग 90 दिन के ऊपर चला, और बिना ब्रेक के ये सर्वे चला, कंटिन्यूस चला, जिसके कोर्ट के आदेश अनुसार जो जो पहलुओं पे सर्वे करना था, स्टडी करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करना था, वो किया गया, और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। उस पर जो जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे अन्य पक्षों द्वारा, वो हमने उसका विश्लेषण दिया गया, उसको डिफेंड किया गया कोर्ट के सामने, हमने उसे क्लैरिफाई किया था कि ये एक प्रॉपर एक्सपर्ट बॉडी द्वारा सर्वे किया गया और पूरी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया।
21: मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं, और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर, न्यायालय के निर्णय के आधार पर, हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है, और न्यायालय के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूँ।
22: यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है। धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है, और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है, 1947 में रही है, भी रही थी, और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। यह तो ठीक है कि न्यायालय ने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं, दोनों का ध्यान रखा गया है।
23: हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो ASI द्वारा कंडक्ट की गई साइंटिफिक स्टडी, जिसमें ASI ने 2100 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है, उसके आधार पर दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से भोजशाला का स्थान मंदिर का परिसर है, माँ सरस्वती जी की देवी जी का स्थान का परिसर है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
24: ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और ASI हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे। उम्मीद करते हैं कि जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा.
13: Let's listen in to the pulse on the ground a day after the High Court Bhotshala verdict. NDTV, of course, has been getting you the latest on this big verdict, but NDTV is now reporting from ground zero. And here's the situation this morning.
0: हक में फैसला आने के बाद प्रति मंगलवार जो है समाज के लोग वहां पे आरती करने के लिए पहुंचते थे, पूजा करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज वो पहला दिन है जब फैसला आने के बाद जो है शनिवार के दिन यहां पे प्रवेश करके आप आरती करके आ रहे हैं. क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है?
1: मैं छोटू यादव हूँ. मैं बचपन से यहीं पे हम पले बड़े हैं और यहीं पे खेला है हमने. यहीं साइड में हम क्रिकेट खेलते थे, सब काम होता था. और हमने शुरू से देखा है कि हम लोग आते जाते थे, हमको कोई रोक टोक नहीं थी. लेकिन बीच में क्या पता क्या हुआ और किस टाइप से सारी मंदिर को बंद कर दिया गया था. उसके बाद में आज खुला है. बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा वापस से स्वरूप वापस लौट आया है कि आज हम वापस से यहाँ खेल सकेंगे. इतने सारे पुलिस वगैरह हमने कभी जीवन में नहीं देखी थी, लेकिन बहुत साल है, हमने तो सब कुछ दिखा दिया.
2: 18 फरवरी 2003 को जो तुम्हारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे उनके कारण आज ताले खुले हैं. मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ. उन्हीं के कारण हम यहाँ खड़े हैं. मैं उनके परिवार को भी श्रद्धांजलि देता हूँ.
3: फैसला आने के बाद आज पहला दिन है, किस तरह से शुरुआत हुई?
2: भाई आज सुबह से सभी समिति के लोग सुबह आए थे. माँ का जो घर गए वहाँ पे नहा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पूजा करी, हनुमान चालीसा करा और माँ की स्तुति की.
3: अब क्या ये निरंतर जो है?
2: अब आज के बाद निरंतर सरकार ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, तो निरंतर चलेगी.
4: वर्षों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और भोजशाला में दर्शन करने में जित आपत्ति आती थी उससे बहुत अच्छा लगा कि अब कोई विघ्न नहीं आ रहा है.
25: कोर्ट का फैसला आ गया,
4: कोर्ट का फैसला अच्छा दिया.
25: प्रतिदिन पूजा करने के लिए
4: मैं हर मंगलवार को भी आता हूं और भोजशाला का शुरू से मेरा यहां पे आ रहा हूं.
26: सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय का आभार, धार की जनता के संघर्ष को प्रणाम, यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिए, जो हमारे 3 कार्यकर्ता है उनको शत-शत नमन. सभी के प्रयासों से सैकड़ों साल बाद ऐसा शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं. जब प्रतिमा आएगी और जब प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो वो ऐतिहासिक दिन का भी जल्दी से जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं.
13: And now let's get you the timeline of this entire controversy, the legal battle that finally culminated in temple being allowed to function and Hindu devotees to worship there. Madhya Pradesh High Court declared the disputed Bhotshala, Kamalmola Mosque site in Dhar, a temple. The High Court cancelled the 2003 Archaeological Survey of India order allowing Muslims to offer Friday prayers on Bhotshala premises. The ASI's key findings at the Bhotshala: historical relics have been in fact unearthed in the investigation by the Archaeological Survey of India. Sculpture fragments of Hindu deities, images of Lord Ganesh as well as Brahma, images of Narsimha and Bhairava, and images of lions, elephants, horses, and several other motifs of the Kirti Mukhas and the Vyalas. 106 pillars appear as parts of the temple. 82 pilasters appeared as parts of the temple structure dated to Parampara dynasty, and the ASI finally had concluded that the structure built on a temple. Now this was concluded by the ASI, the Archaeological Survey of India, that this was indeed a temple. And moving on to south of the country, the Tamil Nadu thriller has ended. In Keralam, Congress has chosen its chief minister, but the focus has now shifted to another Congress-ruled state, and that is Karnataka, where the Sarkar Natak seems to be entering season 2. On D.K. Shivakumar's birthday, his camp launched a fresh campaign with posters and a specially designed next chief minister cake, signalling his renewed bid for the chief minister's post and intensifying the leadership tussle within the party. While Siddaramaiah had earlier thwarted DK's halfway mark ambition, reports say that the deputy chief minister now wants a new cabinet under his leadership and enough time to prove himself. Even as the chief minister pushes for the Greater Bengaluru Authority civic polls, which DKS is resisting, the big question: can the Congress high command delay a decision any longer?
5: I wanted to avoid this mela. So yesterday.

0: in global.
1: And there's a breaking news coming at the top of this bulletin, and this is regarding the paper leaks controversy and the investigation around it. NSUI workers are protesting over the NEET paper leak. Massive protests outside NTA office in Delhi. NTA is the National Testing Agency. Their headquarters are in India's national capital, New Delhi. And the student wing of the Congress Party is protesting outside. There are clashes that have been reported, and the protests are currently underway. Hundreds of NSUI workers, National Students Union of India, protesting against the Modi government. They're demanding answers. They're saying that there needs to be transparency, accountability, and answers from the government. We'll try to get NDTV reporters from ground to get you the latest. In fact, Akhil joins us from the protest side. Akhil, fill us in. What's happening there outside the NTA? Of course, the government has given an assurance and a next date, but this is certainly not going by the demands of the students, who are saying that there needs to be transparency. What's the NSUI demanding now?
2: Well, that's right. If you see, we are just standing outside the NTA headquarters. Behind me, you can see the visuals over here. Large number of students have gathered across several estates, and we are joined by some of the student protesters over here. अच्छे मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम साहिल सेन है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ.
2: दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप लोग, जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कभी यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, कभी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, कभी एनएसयूआई. जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से तीन प्रमुख मांगे क्या है आपकी?
3: प्रमुख हमारी सबसे पहली मांग है एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सक्षम नहीं है एग्जाम करवाने में. कोई भी एग्जाम सक्षम कराने में सक्षम नहीं है ये सरकार. ये चंदा और धंधे की सरकार चल रही है इस टाइम पे, और ये धंधे की सरकार एनएसयूआई कांग्रेस चलने नहीं देगी.
2: धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से जो है जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है. 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
3: हमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में 2024 में भी किया था. सीबीआई जांच की रिपोर्ट 2024 के क्या आई और किसको गिरफ्तार किया, किसको सजा दी गई?
2: आप भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका?
4: कार्तिकेय भारद्वाज नाम है मेरा.
2: कार्तिकेय जी, ये बताइए क्या क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे जो वो क्या क्या
4: है? आवर डिमांड इज दैट एनटीए शुड बी बैंड एंड धर्मेंद्र प्रधान जी शुड रिजाइन, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू द एजुकेशन मिनिस्टर, टू एनटीए एंड ऑल्सो टू प्रधानमंत्री मोदी जी. दैट वॉट गोज अराउंड ऑल्सो कम्स अराउंड. नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और एनटीए, आप लोग ये चीज याद रखना कि कर्मा आपको हिट बैक करेगा. जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे, भगवान ना करे आपके कोई बीमारी हो जाए, तो जिन डॉक्टरों का पेपर लीक आपने कराया है ना, वो पेपर लीक के बने हुए डॉक्टर ही आपका इलाज करेंगे. उस दिन याद करना कि कितने पेपर लीक कराए थे आप लोगों ने.
2: हाउ लॉन्ग दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग टू कंटिन्यू? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मना कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस वाले कह रहे हैं आपको यहाँ से जाइए, अब हो गया प्रोटेस्ट, बहुत देर खड़े हो गए यहाँ पे आप.
4: दिस प्रोटेस्ट विल कैरी ऑन टिल आवर डिमांड्स आर फुलफिल्ड. We need NTA to be banned and we need education minister to resign. And you can see that police is not letting us do the protest. The CRPF is also there. And I want to say that you people are also human beings. You also have your son and daughter. Someday these doctors who are made from the leak paper will also do their treatment. We want that. We want you guys to also come with us and protest with us, because it is to save our nation. Arey Dharmendra Pradhan ji, istifa do!
5: Istifa do! Istifa do!
4: Paper leak ko band karo!
5: Band karo! Band karo!
4: Arey police prashasan, hosh mein aao!
5: Hosh mein aao! Hosh mein aao!
4: Hamare desh ko bachalo!
5: Bachalo!
2: As we can see, this is a simple.
4: Hosh mein aao! Dharmendra Pradhan ji, istifa do!
5: Istifa do! Istifa do!
4: अरे घर में तो बच्चे आपके भी है, अरे बच्चे तो पढ़ाई आपके भी करते हैं भाई साहब,
6: के भी तो बच्चे हैं.
4: अरे बच्चों को मत रखो,
6: भी तो बच्चे मरते हैं.
4: देश को बना लेने दो,
6: वहीं तो भविष्य बनाना है
4: आपको. देश को बचा के रहेंगे. अरे बच्चे तो आपके भी पढ़ाई करते हैं.
6: आप धक्के देके मैं ऐसे बता दोगे?
4: बच्चे तो आपके भी पढ़ाई करते हैं. अरे पेपर लीक कभी आपके बच्चों का भी हो जाएगा.
6: आपके बच्चे हम भी तो आपके बच्चों की तरह धक्के दे रहे हो. मैं ऐसे
2: आप लोगों का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ताला और जंजीर लेकर के आए हैं, क्या मतलब है उसका? ताले लेकर के क्यों आए हैं प्रोटेस्ट?
6: सर मैं ये चाहता हूँ बच्चों को न्याय दे, उनका भविष्य बिगड़ा हुआ है. जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने पैसा कमाया था, आज उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो क्या करेंगे? आज उनका भविष्य खराब हो गया है.
2: दूसरी बार नीट दिया इस बार जब टाइफॉइड में जूझ के भी इतना पढ़ाई करके भी जब ऐसे पता चले एनटीए का पेपर लीक हो गया तब उसको कैसा महसूस होगा? अब वो दोबारा बैठेगा, पढ़ेगा.

0: And of course, this is the top story of the day about the Bodh Shala that has been, in fact, given a mandate. And it has been said that this is a temple the Hindus are worshipping there. The Madhya Pradesh High Court has given a verdict stating that the disputed Bodh Shala temple, Kamal Mola Mosque complex in Dhar of Madhya Pradesh, is a temple dedicated to goddess Saraswati. Following the verdict, people entered the Bodh Shala complex to offer prayers after the High Court declared the site a Hindu temple. The court also urged the Muslim community to approach the state government for allotment of a separate land in the district for the construction of a mosque. While Hindu side devotees celebrated and offered prayers inside the Bodh Shala complex, the Muslim side says it will move the Supreme Court to challenge the verdict. The Muslim side claims it is a 700-year-old mosque and says the verdict should be cancelled, while the Hindu side maintains that the site is in fact a Hindu temple belonging to goddess Vagdevi.
1: So, फैसले से satisfied नहीं है और अभी हम हमारे पास पूरा detailed फैसला आया नहीं है तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का course क्या लेंगे लेकिन हाँ definitely हम इससे satisfied नहीं है तो हम इसको लेकर Supreme Court तो जाएंगे राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक जमीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके और उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके एएसआई के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया
2: आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे
3: हमारे भारत देश में हमारी भूमि में हमारी संस्कृति में हमारे धर्म में हमारे ही देवी देवता को पूजने से रोका जाता था और यहाँ से नहीं हो रहा था ये सदियों से हो रहा था आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है भारत के अंदर लेकिन हमने 4 साल इसकी लीगल लड़ाई लड़ी 4 साल में हमने तथ्य में कोर्ट में तथ्य रखे और उन तथ्यों के आधार पर आज कोर्ट ने मुहर लगा दी कि हिंदू समाज
4: मूर्ति कब लाई जाएगी कब ऐतिहासिक
3: पहले तो देखिए कोर्ट का पूरा निर्णय हम पढ़ेंगे पहले विस्तृत निर्णय विस्तृत आदेश जो होगा तो उस पर हमको पूरा पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे हैं अभी तक का जो हमको प्रारंभिक रूप से जो जानकारी हो पा रही है जो कोर्ट ने बताया है वो यह है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है या केंद्र सरकार लंदन से म्यूजियम से माता वाग्देवी की मूर्ति को ला करके यहाँ स्थापित करे
1: देखिए ये धार के हिंदुओं का सदियों का संघर्ष का परिणाम है जो बहुत खूबसूरत तरीके से आज जो है हमसे टकराया है मुझे लगता है कि ये जीत कई वर्षों का इंतजार के बाद और कई लोगों ने अपनी जवानी खपाने के बाद ये पाई है और जैसा आज आदेश आया है मुझे लगता है कि ये आदेश बड़ा स्पष्ट है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर है
5: लंबा सर्वे किया गया और सर्वे के साथ साथ ये कहा गया था कि पहले मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि सर्वे रिपोर्ट झूठी है एक पक्ष की रिपोर्ट
6: देखिए जो हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे एएसआई एक एक्सपर्ट बॉडी है सेंट्रल बॉडी है और एक्सपर्ट्स द्वारा एक एक एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर्स की जैसा कि कोर्ट के आदेश में था और एक लंबा चौड़ा टीम के साथ इसका सर्वे किया गया था जो लगभग 90 दिन के ऊपर चला और बिना ब्रेक के ये सर्वे चला कंटिन्यूस चला जिसके कोर्ट के आदेश अनुसार जो जो पहलुओं पे सर्वे करना था स्टडी करनी थी इन्वेस्टिगेशन करना था वो किया गया और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी उस पर जो जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे अन्य पक्षों द्वारा वो हमने उसका विश्लेषण दिया गया उसको डिफेंड किया गया कोर्ट के सामने हमने उसे क्लैरिफाई किया था कि ये एक प्रॉपर एक्सपर्ट बॉडी द्वारा सर्वे किया गया और पूरी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया
0: Now, even as we get you all aspects of the Bodh Shala verdict that has huge repercussions, let's listen in to the pulse on the ground a day after High Court Bodh Shala verdict. NDTV's Ajay Sharma reports from the ground zero. And here is the situation this morning, a day after the High Court verdict.
7: आधार गौशाला का ये गर्भगृह है, यहाँ तमाम लोग पहुँचने लगे हैं। यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ माताएं हैं, कुछ महिलाएं हैं। आमतौर पर यहाँ इस तरीके से पूजाएं नहीं होती है, मालाएं नहीं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन आज यहाँ मालाएं चढ़ाई जा रही हैं गर्भगृह बताकर। ये गर्भगृह है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें इसे ही गर्भगृह बताया गया है। आप देख सकते हैं कुछ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद पहुँचे हैं और यहाँ पूजन पाठ कर रहे हैं और माला लेकर पहुँचे हुए हैं। यही प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जुलंदन से प्रतिमा आएगी, इसी को ही गर्भगृह माना गया है। आम दिनों में इस तरीके से स्थितियां नहीं बनती हैं, लेकिन आज जो है यहाँ पे ये पूजा पाठ का कार्यक्रम किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ जो है मौजूद हैं और अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ वहाँ मंदिर के हिस्सों में लोग जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सी प्रतिमा यहाँ पे?
8: ये सिद्ध यंत्र, दो यंत्र बचे हैं यहाँ पर, एक मणिकर्णिका का यंत्र और एक नागमणि बंधक यंत्र, वो दो यंत्र की पूजा यहाँ पर
7: होती है। अच्छा ये बताइए कि अब प्रतिमा कब ले, जो आम दिनों में कल जैसे नमाज हुई तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा मौजूद नहीं था जो पूजा हो सके।
8: कल तो ASI के पुराने नियम के हिसाब से शुक्रवार को 1-3 नमाज होती, बाकी समय हिंदुओं के लिए प्रवेश बंद था, इसलिए कल तो पुराने नियम का पालन किया गया, किंतु आज माँ सरस्वती का मंदिर घोषित हो चुका है, इसलिए आज से ये माँ का पावन मंदिर है, अब ये अन्य कुछ नहीं है।
0: Now, a political firestorm has erupted around TMC Member of Parliament Abhishek Banerjee, with an FIR now filed over his alleged remarks against Union Home Minister Amit Shah during the election campaign. The complaint accuses Banerjee of making inflammatory and provocative statements targeting the Home Minister, triggering a major political showdown. The Trinamool MP has now officially been booked. The FIR invokes a series of serious charges, including inciting riots, spreading hatred, issuing threats, creating fear, and allegedly disrupting communal harmony. Investigators are also examining claims that misleading statements were made during the campaign speeches ahead of the elections. Let's listen in to Dilip Ghosh on the latest development.
9: Chahe Abhishek Banerjee ho, Mamata Banerjee aur unke neta, usme dar ke mare logon ne complaint nahi kiya tha, aur police bhi nahi leta. Police bhi taiyar hai, janta bhi taiyar hai, nyay humko दिलाना है सबको, पर होगा।
0: And now to Prime Minister's appeal to the nation. Prime Minister Narendra Modi's spend smart appeal is rippling across the country, with several states and ministries encouraging everyday frugal choices to rally the nation to meet the global crisis. From walking to the secretariats to flying economy to encouraging the use of public transport and bringing back the work from home culture. Several chief ministers have responded to the Prime Minister's austerity call. This hasn't deterred the opposition in questioning the government's management of the crisis, with them alleging that the burden has been passed on to the citizens. The BJP in defence has argued that this is a global crisis which the government has handled well for minimal impact. And these are the reactions that we are picking up on NDTV.
10: इस सामंती जो चंडाल चौकड़ी की साजिशी धम्मा चौकड़ी है, ये जो है वो समाज में प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के बजाय पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आज समाज बहुत समझदार है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि समाज और सरकार को मिल करके, जुट करके, मजबूती के साथ इस संकट के समाधान का हिस्सेदार भागीदार बनना है और संकट से हम उभरेंगे और बाहर आएंगे।
11: आज मैं मुंबई में देखे, हर परिवार ने मोदी जी के आह्वान को सपोर्ट किया है। कहीं मुंबई के परिवारों ने विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है, कई परिवारों ने अपने व्हीकल जो है वो फोर व्हीलर ना अपनाते हुए मेट्रो से प्रवास कर रहे हैं। पूरा देश मोदी जी के आह्वान के साथ है और एक इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जब आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, तो देश हित में करते हैं, राष्ट्र हित में करते हैं। मुझे लगता है मोदी जी का आह्वान आने वाले दिनों में इंडिया स्टेबल रहे।
0: Over to Prime Minister Narendra Modi's five-nation tour. After completing the first leg of his five-nation tour in the UAE, Prime Minister Narendra Modi is in the Netherlands for a two-day visit. Prime Minister Modi received a grand cultural welcome from the members of the Indian diaspora with classical dance and musical performance organized in Prime Minister's honor. Remember that the Prime Minister's visit to the Netherlands is expected to boost cooperation spanning diverse sectors, including defense, security, innovation, green hydrogen.

0: hydrogen and semiconductors. The Prime Minister has packed schedule with bilateral engagements with the Dutch counterpart, Prime Minister Rob Jetten, and luncheon with the King and the Queen of the Netherlands, and a round of table meetings with the Dutch CEOs. We will, of course, keep tracking this live as the Prime Minister begins his events at the Netherlands, but this is what Tuhin Kumar, India's ambassador to Netherlands, had to say.
1: The visit of Prime Minister Modi to the Netherlands is very significant. Our relations between the two countries, they have gone a remarkable, actually positive upward trajectory. Secondly, this visit is also happening very early in the tenure of the new government of the Netherlands. And therefore, it will provide an opportunity for the two leaders to sit together, to establish rapport with each other and review the progress made.
2: बातचीत तो करने का मौका नहीं मिला पर उनको देखना उनके इतने करीब आना ये बहुत अभूतपूर्व अनुभव था बहुत समय से वेट कर रहे थे इस दिन का और आए यहाँ पर कुछ घंटे खड़े हुए उनके इंतजार में लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर उनको इतने नजदीक से
3: मैं नीदरलैंड में यहाँ पे 7 साल से रह रहा हूँ तो मेरी माताजी अभी मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आई हुई है तो माताजी ने यहाँ पे ये प्ले कार्ड बनाया है मोदी जी के लिए मोदी जी को यहाँ पे सुस्वागतम करने के लिए तो इसका मीनिंग मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है रत्नाकरा धौतपदाम हिमालया किरीटनी ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम इसका मतलब यह है कि रत्नाकर मतलब समुद्र जिसके पैर धोता है हिमालय का जिसने मुकुट धारण किया हुआ है स्वयं ब्रह्मा जैसे जहाँ पे राजा है और रत्न जैसे जहाँ पे ऋषि मुनि है ऐसे महान भारत माता को हम सब वंदन करते हैं
4: हम उनके सामने परफॉर्म किया हमने गरबा परफॉर्म किया फिर परफॉर्म होने के बाद उनके हम पास गया हाथ मिलाया फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो हमने जय माता दी भी कहा जय हिंद भी कहा तो काफी खुश थे और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने बहुत मेहनत की पिछले 3-4 हफ्तों से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बिकॉज हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लाइफ टाइम की हम इसके लिए रेडी थे और आज हम बहुत खुश हैं हम उनके सामने थे हमने उनसे हाथ मिलाया उनको हमने अपने सामने से देखा हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हैं
5: हमने नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्म किया और हमको बहुत बहुत अच्छा लगा हमने उनको सामने देख के हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नेदरलैंड में हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं सो हम लोग बहुत ही अद्भुत हमारा एक्सपीरियंस रहा वो चीज का एंड हम लोग बहुत शुक्रिया है एम्बेसी को और सब लोगों को जिन्होंने हमें परफॉर्म करने के लिए यहाँ बुलाया
0: Now over to some sports news. Just 15 years old, but already one of the biggest stories of the IPL 2026. Vaibhav Suryavanshi's dream run continues with the maiden India A ODI call-up for the Tri-Series in Sri Lanka. Not the senior India team member yet, but certainly another giant leap for the teenage sensation from Bihar. Here's an NDTV report.
6: Suryavanshi, you have done it again. The nation applauds.
7: At just 15 years old, Vaibhav Suryavanshi's rise is only getting louder. The teenage batting sensation, already one of the breakout stars of IPL 2026, has now earned his maiden India A ODI call-up. After already being picked in the India A T20 setup earlier, the youngster has now been named in the squad for the one-day tri-series in Sri Lanka. A massive setup and another sign that Indian cricket's next big thing is being fast-tracked. But to be clear, this is not a senior India men's team call-up yet. No blue jersey at the highest level, at least not for now. But make no mistake, this is still a huge opportunity. Because India A cricket has long been the launch pad for future stars. And Vaibhav is forcing selectors to take notice. Fearless against pace, brutal against spin, and completely unfazed by the big stage. From school cricket headlines to IPL stardom and now India A colours, the journey is moving fast for the teenager from Bihar. At 15, Vaibhav Suryavanshi is already knocking on big doors and Indian cricket is watching closely. Bureau Report, NDTV.
0: That's all we have on this bulletin, but news and updates continue all through the day on NDTV.

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। ये इधर आ, इधर आ।
1: हेलो दी।
0: हेलो, कहाँ से है तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना,
0: हैप्पी बर्थडे।
2: हाथ मिला, थैंक यू।
0: चॉकलेट दे,
1: चॉकलेट दो।
2: चॉकलेट
1: कहाँ है तुम्हारा?
3: हेलो सुनीता,
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये।
1: और क्या,
0: मैं हाथ से नहीं खाऊँ, हाथ से खाऊंगी। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी।
1: स्पून चाहिए मेरे को।
0: ये सोचेंगे ना न्यूट्रिशन फूड है।
1: चाहिए मेरे को स्पून चाहिए।
0: मैं असम में पैदा हुई थी, मम्मी और भैया है, पापा तो छोड़ के चला गया।

मैं बस नंबर 70 रहने से बता देना, 75 और 78। हाँ, मोती नगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती है, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। भैया मोतीनगर उतार देना। असम में मेरा घर कठहतुली कछाड़ी गांव, 4 नंबर वार्ड। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन की पर्पस से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। मैं हॉस्टल में जब रहती थी मुंडिका जब रहती थी तो लड़कियां बातें करते थे कि तुमको हॉस्टल में तुम मतलब उन लोग बात करते थे कि मुझे अगले स्टेट में जाना होता है, खेलना पड़ता है। तो मैंने भी बोला कि मैं भी जाऊंगी घूमने के लिए, तो मैं घूमने की पर्पस से गई थी। लेकिन उनमें ही मैम ने मेरा स्किल देखा, उसने मुझे बैटिंग करने के लिए बोला। मैंने बैटिंग किया तो उसने मेरा स्किल देखा तो उसने बोला कि तुम कर सकते हो, तुम कर लो। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मुझे मन नहीं करता है। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकते हो, तो मैंने उससे मेरा कंटिन्यू हुआ है। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले लाइक नो वन वर सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल बीइंग अ ब्लाइंड हाउ विल यू एबल टू प्ले, बट दैट आई शोन इनटू एक्शन।

Our game depends on three categories. Those categories are B1, B2, B3. B1, they are totally blind, B2 up to 3 meters, and B3 up to 6 meters. I like to bet. First, we need to just see the weight of the bat, which according to us. So this bat is perfect for me, and I'm just holding as I am B1 category. So I can hold this way, because when the ball comes directly, it will hit the stump. So before that, I just need to keep my left leg this. This is for all batsmen, B1, B2, B3. When the bowler says that ready, then I have to be ready with this position. So at the time when the bowler says that play, after just the, when they say the play, my bat should be like this. Because if we are not doing this also, no, the ball will come and hit to our bat. And as soon as the ball reach here, we need to just fully roll it. This is the position for B1. You can see the ball again, you can hear the sound also. This ball is the main thing through which we play. First, we need to focus on the sound. When the bowler says that ready bat, that means I'm ready. Like, so when the bowler says play, at the time play means the ball is relieved. Ball jab chhod dete hai na, to hum log ko at least hum ginti karte hai ek. Ginti karte hai aur awaaz mein awaaz matlab ball ki awaaz hum sunte hai, focus karte hai. Kabhi kabhi kya hota hai ki hum ball ki awaaz pata nahi chalta hai. To hum bat se nahi, hum takkar nahi laga sakte ball ko bat se. तो वही है, अभी हम दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपना मन में एक इशारा रखना है कि अच्छा लो अभी इसने बॉल छोड़ दिया, तो मतलब अभी आने वाला है. सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं. प्ले ब्लाइंड क्रिकेट जो कहा जाता है ना, उसका कीपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वो कौन देखता है? कीपर. जब हम बॉलिंग करते हैं, हम पहले स्टंप छू कर देखते हैं कि हम सीधा है कि नहीं. इतना डिस्टेंस रखना चाहिए. ये दिस इज़ द मेजरमेंट. हम जब बॉलिंग करते हैं तो कीपर को पूछते हैं कि हमारा हाथ सीधा है कि नहीं. इज इट आवर हैंड स्ट्रेट? सो चेक द कीपर. तो कीपर बोलेंगे राइट लेफ्ट, और कीपर पूरा स्ट्रेट कराएंगे उस हाथ को. तो स्ट्रेट करने के बाद तो हम मतलब तैयार है फेंकने के लिए. बोल रहा है हियर हियर हियर, मतलब इधर इधर इधर फेंको. तो डायरेक्शन देंगे हियर हियर हियर, उसके बाद हम रेडी बोल के प्ले बोल के फेंक देते हैं. प्ले. वाह वाह. व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम, मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूँगी, हाउ विल आई प्ले यार, इट्स सो टफ. व्हेन आई सो दैट गर्ल्स आर प्लेइंग, देन आई जस्ट फील माई सेल्फ दैट व्हाई आई कैन प्ले, आई ऑल्सो कैन प्ले. इफ दे आर एबल टू प्ले, देन आई ऑल्सो.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू, फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स, योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज, इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
3: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind

0: the National Testing Agency office. And now protests have also reached the residence of Dharmendra Pradhan, the union minister who is responsible for education and the kind of papers and the examinations that are conducted across the country. Well, he did come out in media yesterday, also announced a new date for the examination, but now protests happening outside the residence of the union minister, Dharmendra Pradhan. Let's get you a ground report that has been filed by Ravish of NDTV.
1: देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा नीट को रद्द कर दिया गया है और जब से रद्द होने की खबर आई लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कल हमने एनटीए के बाहर देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। आज आप देखिए कि यहां पर एनएसयूआई के तमाम सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो झालमुड़ी और फर्जी डिग्री लेकर यहाँ पर एक तरीके का प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। ये झालमुड़ी और डॉक्टर का आप लोगों ने एप्रन पहनकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: सर हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। आप सर जानते होंगे आज देश की क्या स्थिति है। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बच्चे अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। वो डॉक्टर की डिग्री ऐसे फर्जी मामलों से बन रही है। 2024 में भी पेपर पूरा लीक हुआ था पर सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट नहीं करवाया, वो बात दबा दी गई। 2026 में वो दबा ही नहीं गई इसलिए वापस रीनीट हो रहा है। आप कैसे, आप मानिए ना कि अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन कर रही है तो 3 साल में, मतलब 2024-25-26 से 1-2 साल में ही ऑलमोस्ट 2 बार पेपर लीक कैसे हो जाता है। एग्जाम माफिया को डर नहीं है क्या सरकार का, पुलिस का, कैसे?
1: ये आप देखिए, ये झालमुड़ी जो है, ये झालमुड़ी यहाँ पर आखिर क्यों आप बेचने का क्या तरीका?
3: दवाई के तौर पर हम लोग झालमुड़ी दे रहे हैं क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से मोदी जी ने झालमुड़ी बेच के इलेक्शन जीत लिया था, लोगों को जुमलाबाजी कर करके ये सारे काम करते हैं, तो हम लोग भी है ना डॉक्टर की डिग्री की जगह दवाई जो देते हैं उस तरीके से हम झालमुड़ी देना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोगों की डिग्री अब किसी काम की नहीं रही है। क्योंकि एग्ज़ाम देते हैं बार बार वो पेपर लीक हो जाते हैं तो इस तरीके से
1: लगातार जो यहाँ पर एनटीए के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, अभी पुलिस भी अब यहाँ पर आ गई है, दूसरी तरफ दिखाइए, पुलिस भी यहाँ पर आ गई है और ये आप देखिए कि ये सारे जो है पूरा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये शास्त्री भवन है दूसरे साइड में, शास्त्री भवन पे
4: ये मोदी जी की डिग्री देखिए आप,
1: प्रदर्शन कर रहे हैं और
4: ये हमारी डिग्री है, इससे आज हम डॉक्टर बन चुके हैं क्योंकि नीट का एग्जाम तो हो नहीं रहा है तो ऐसे ही डिग्री अब मिलेंगी देश में।
0: We are with the students and that's why there is an outrage all across the country, but we are giving you what the students of the entire country are telling you. The NEET UG 2026 paper leak probe has now reached the biggest breakthrough yet, with the CBI arresting the alleged kingpin behind the leak from Pune. Meanwhile, NSUI, the student wing of the Congress party, is protesting outside the NTA headquarters in the national capital, even demanding the education minister's resignation. This comes as probe into the paper leak intensifies. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to the CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, mobilized students in Pune and conducted special classes at his residence, where he allegedly dictated questions, options, and even correct answers to the students. As per CBI sources, 2 more professors are said to have aided Kulkarni in the leak, and raids are now being conducted and carried out to apprehend them. Let's get you a ground report from the NSUI protest that has been filed by our reporter Akhil, and this is outside the National Testing Agency headquarters in India's national capital.
5: Yeah, just standing outside the NTA headquarters. So behind me, you can see the visuals over here. Large number of students have gathered across several states, and we are joined by some of the student protesters over here. अच्छा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम साहिल सेन है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ।
5: दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप लोग, जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, कभी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, कभी NSUI। जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से 3 प्रमुख मांगे क्या है आपकी?
6: प्रमुख हमारी सबसे पहली मांग है एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सक्षम नहीं है एग्जाम करवाने में, कोई भी एग्जाम सक्षम कराने में सक्षम नहीं है सरकार। चंदा और धंधे की सरकार चल रही है इस टाइम पे, और ये धंधे की सरकार NSY कांग्रेस चलने नहीं देगी।
7: धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से जो है जांच हो रही है, CBI जांच कर रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
6: हमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में 2024 में भी किया था, CBI जांच की रिपोर्ट 2024 के क्या आई और किसको गिरफ्तार किया, किसको सजा दी गई?
7: आप भी NSY के कार्यकर्ता है, क्या नाम है आपका?
8: कार्तिकेय भारद्वाज नाम है मेरा।
7: कार्तिकेय जी ये बताइए क्या क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे जो वो क्या क्या?
8: आवर डिमांड इज दैट NTA शुड बी बैंड एंड धर्मेंद्र प्रधान जी शुड रिजाइन, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू द एजुकेशन मिनिस्टर, टू NTA एंड ऑल्सो टू प्रधानमंत्री मोदी जी, दैट वॉट गोज अराउंड ऑल्सो कम्स अराउंड। नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और NTA, आप लोग ये चीज याद रखना कि कर्मा आपको हिटबैक करेगा। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे, भगवान ना करे आपके कोई बीमारी हो जाए, तो जिन डॉक्टरों का पेपर लीक आपने कराया है ना, वो पेपर लीक के बने हुए डॉक्टर ही आपका इलाज करेंगे। उस दिन याद करना कि कितने पेपर लीक कराए थे आप लोगों ने।
7: How long this protest is going to continue? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो CRPF के जवान हैं वो मना कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले कह रहे हैं आपको यहाँ से जाइए, अब हो गया प्रोटेस्ट, बहुत देर खड़े हो गए यहाँ पे आप।
8: दिस प्रोटेस्ट विल कैरी ऑन टिल आवर डिमांड्स आर फुलफिल्ड। We need NTA to be banned and we need education minister to resign. And you can see that police is not letting us do the protest. The CRPF is also there. And I want to say that you people are also human beings. You also have your son and daughter. Someday these doctors who are made from the leak paper will also do their treatment. Do we want that? We want you guys to also come with us and protest with us because it is to save our nation. Are Dharmendra Pradhan ji, istifa do!
9: Istifa do! Istifa do!
8: Paper leak ko band karo!
9: Band karo! Band karo!
8: Are police prashasan, hosh mein
9: aao! Hosh mein aao! Hosh mein
8: aao! Hamare desh ko bachalo!
9: Bachalo!
7: As we can see, this is a simple.
8: Dharmendra Pradhan ji, istifa do!
9: Istifa do! Istifa do!
8: अरे घर में तो बच्चे आपके भी है, अरे बच्चे तो पढ़ाई आपके भी करते हैं भाई साहब,
10: के भी तो बच्चे,
8: अरे बच्चों को
10: मत रखो, अरे बच्चे मरते हैं,
8: देश को बना देने दो,
10: वरना तो भविष्य बनाना है आपको,
8: देश को बचा के रहेंगे, अरे बच्चे तो आपके भी पढ़ाई करते हैं,
10: आप धक्के देके मैं ऐसे भाग दोगे,
8: बच्चे तो आपके भी पढ़ाई करते हैं, अरे पेपर लीक कभी आपके बच्चों का भी हो जाएगा,
10: आपके बच्चे हम भी तो आपके बच्चों की तरह धक्के दे रहे हैं ऐसे।
7: आप लोगों का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ताला और जंजीर लेकर के आए हैं, क्या मतलब है उसका, ताले लेकर के क्यों आए हैं प्रोटेस्ट?
10: सर मैं ये चाहता हूँ बच्चों को न्याय दे, उनका भविष्य बिगड़ा हुआ है, जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने पैसा कमाया था आज उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो क्या करेंगे आज?
0: Now, even as protests continue all across the country and especially in India's national capital, NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in to what he had to say.
11: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो, इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं, ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30 के मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ले रहे, मतलब पेपर के पहले, और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपए, और पेपर कब मिलेगा क्या नहीं इसकी डिटेल आप देख सकते हो। और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप।
12: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपए की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
11: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को, मैं उसका मेंटर हूँ, वो मेरी मेंटी है, वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है उस स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपए उनको दे भी दिए,
12: इस बात की सब आपके पास प्रूफ
11: है? उसका स्क्रीनशॉट है आप? हाँ, मतलब, और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को, मतलब इस ये सब चर्चा थी, बट मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है ऐसा था, बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है। क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया उसके बाद ये जो QR कोड है, वो QR कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको QR कोड भेज देते थे, और वो QR कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो PDF फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद तुमको पेपर मिल जाएगा।
12: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
11: चाहिए? उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा। एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसी रकम पहुंच जाता है, मतलब 25 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसी रकम थी, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000 50,000 60,000 ऐसे जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया है।
0: And moving on to Madhya Pradesh, there's breaking news coming at this hour, and this is the Congress leader Hussein Dalwai, who is in fact reacting to the High Court verdict. Congress leader Hussein Dalwai is saying, and I'm quoting him, all this temple mosque dispute is being deliberately orchestrated. They want to bring the rule of Sanatan Dharma in this country. Sanatan Dharma is the religion of Brahmins only, a religion opposed to the Bahujan Samaj. They want to bring Sanatan Dharma and end the constitution of the country. Now, this is the latest statement that's come in from the Congress leader, Hussein Dalwai. Let's listen into what he had to say.
13: जानबूझ के चलाए उनको इस देश में सनातन धर्म का राज लाना है और सनातन धर्म खाली मुसलमानों के दलितों के या इनके खिलाफ है क्रिश्चियनों के खिलाफ है ऐसा मत समझिए सनातन धर्म खाली ब्राह्मणों का धर्म है बाकी जो बहुजन समाज के विरोध का धर्म है और वो यहाँ वो लाना चाहते हैं इस देश की संविधान वो ख़त्म करना चाहते हैं
0: A controversial statement by Congress leader Hussein Dalwai, but Aishwarya Jain of NDTV is joining us on this big story. A very important verdict by the Madhya Pradesh High Court, Aishwarya, that is very clear that this is a temple, but the Muslim community has the right to approach the state government to construct a mosque at a separate site. Then why is the Congress now jumping in to create a controversy? Is this the official version of the Congress party?
14: Well, so far, the Congress leadership hasn't commented on what Hussein Dalwai has stated. And perhaps when it will go down to deeper controversy, certainly what we have seen in the past, Congress party distancing themselves from such controversial comments. But it is Hussein Dalwai who has stated that it is to bid to bring in the Sanatan Dharam as a law in India and perhaps to end the constitution and perhaps what Rahul Gandhi and the senior leadership has in the past spoken about ending the constitution and this government perhaps want to end the constitution, they want to finish it and certainly want to bring certain more amendments. And after the Madhya Pradesh High Court verdict, there are several such comments that have came in from the Congress and the opposition party hitting out at the center. But remember, it is no role of the central leadership or the government of India. It is Madhya Pradesh High Court's own judgment where the Muslim side can rather approach the Supreme Court if they want to challenge it. But certainly now, a controversial statement made and stated that it is deliberately orchestrated. Thing that has happened and is transformed in the Madhya Pradesh High Court. Certainly, how the Congress leadership or the Congress party would be reacting on Hussein Dalwai's statement is something which is very interesting to see.
0: All right, that's the latest that we are picking up on the Madhya Pradesh High Court verdict. Now, Congress leader Hussein Dalwai reacting to it. Aishwarya Jain, thank you very much for joining in. Now, let's get you the entire timeline and the history behind this particular controversy or the verdict that has happened in Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh High Court has given a verdict stating that the disputed Bodhshala temple, Kamal Mala Mosque complex in Dhar, is a temple dedicated to Goddess Saraswati. Following the verdict, people entered the Bodhshala complex to offer prayers after the High Court declared the site is a Hindu temple. The court also urged the Muslim community to approach the state government for allotment of separate land in the district for construction of a mosque. While the Hindu side devotees celebrated and offered prayers inside the Bodhshala complex, the Muslim side says it will move the Supreme Court to challenge the verdict. The Muslim side claims it is a 700-year-old mosque and says the verdict should be cancelled, while the Hindu side maintains that the site is a temple belonging to Goddess Vagadevi. Let's listen in to some of the reactions that we are picking up.
15: हम इस फैसले से satisfied नहीं हैं और अभी हम हमारे पास पूरा detailed फैसला आया नहीं है तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे लेकिन हाँ डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक ज़मीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके और उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके ASI के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया
16: आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो ASI का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है कोर्ट ने भोशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे।
17: हमारे भारत देश में, हमारी भूमि में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे ही देवी देवता को पूजने से रोका जाता था और यहाँ से नहीं हो रहा था, इस सदियों से हो रहा था। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है भारत के अंदर, लेकिन हमने 4 साल इसकी लीगल लड़ाई लड़ी, 4 साल में हमने तथ्य में कोर्ट में तथ्य रखे और उन तथ्यों के आधार पर आज कोर्ट ने मुहर लगा दी कि हिंदू समाज
18: की मूर्ति कब लाई जाएगी, कब ऐतिहासिक भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा।
17: पहले तो देखिए कोर्ट का पूरा निर्णय हम पढ़ेंगे, पहले विस्तृत निर्णय और विस्तृत आदेश जो होगा तो उस पे हमको पूरा पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे हैं। अभी तक का जो हमको प्रारंभिक रूप से जो जानकारी हो पा रही है, जो कोर्ट ने बताया है, वो यह है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है या केंद्र सरकार लंदन से म्यूजियम से माता वाग देवी की मूर्ति को ला करके यहाँ स्थापित करे।
19: देखिए ये धार के हिंदुओं का सदियों का संघर्ष का परिणाम है जो बहुत खूबसूरत तरीके से आज जो है हमसे टकराया है। मुझे लगता है कि ये जीत कई वर्षों का इंतजार के बाद और कई लोगों ने अपनी जवानी खपाने के बाद ये पाई है, और जैसा आज आदेश आया है मुझे लगता है कि ये आदेश बड़ा स्पष्ट है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर है।
20: एक लंबा सर्वे किया गया और सर्वे के साथ साथ ये कहा गया था कि पहले मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि सर्वे रिपोर्ट झूठी है, एक पक्ष की रिपोर्ट है।
21: देखिए जो हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे, ASIA एक एक्सपर्ट बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, और एक्सपर्ट्स द्वारा एक एक एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर्स की, जैसा कि कोर्ट के आदेश में था, और एक लंबा चौड़ा टीम के साथ इसका सर्वे किया गया था जो लगभग 90 दिन के ऊपर चला और बिना ब्रेक के ये सर्वे चला, कंटिन्यूस चला, जिसके कोर्ट के आदेश अनुसार जो जो पहलुओं पे सर्वे करना था, स्टडी करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करना था, वो किया गया और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। उस पर जो जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे अन्य पक्षों द्वारा, वो हमने उसका विश्लेषण दिया गया, उसको डिफेंड किया गया कोर्ट के सामने, हमने उसे क्लैरिफाई किया था कि ये एक प्रॉपर एक्सपर्ट बॉडी द्वारा सर्वे किया गया और पूरी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया।
22: मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्यप्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर, न्यायालय के निर्णय के आधार पर, हम अपने लिए इस निर्णय को सुरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाए। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सुरोधार्य करता हूँ।
23: यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है। धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है, 1947 में रही है, भी रही थी, और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। यह तो ठीक है कि न्यायालय ने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं, दोनों का ध्यान रखा गया है।
24: हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो ASIA द्वारा कंडक्ट की गई साइंटिफिक स्टडी, जिसमें ASIA ने 2100 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है, उसके आधार पर दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से भोजशाला का स्थान मंदिर का परिसर है, माँ सरस्वती जी की देवी जी का स्थान का परिसर है। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
25: ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मुझे लगता है कि
1: भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे। उम्मीद करते हैं कि जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा।
2: आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द जजमेंट पास बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो कमाल मौला मस्जिद पे उन्होंने आज जो जजमेंट दिया, मैं समझता हूँ ये एरोनियस है। इसके अंदर बहुत सी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए ये जजमेंट उन्होंने ऐसा के पास कर दिया। फिलहाल जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये

और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरो प्यारो राजस्थान और ए फॉर असम।

जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राव यतन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं। मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे यहां बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, यह एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि दो महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन परिवार के संस्कार नहीं बदले, अपनापन नहीं बदला। आपने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपने पुरखों की भाषा को भी छोड़ा नहीं।
हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस

यहां बहुत पॉपुलर है। ऑन इन स्टेशन के माध्यम से भारत का संगीत और संस्कृति भी डच फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। द गांधी सेंटर हो या फिर अलग अलग शहरों के स्कूल, आप अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। सोच रहे हैं ना? सोचिए, जरा और सोचिए। आज से 12 वर्ष पहले ...2014 में

16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्वर्ग से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। और समर्पित भाव से, आप सबके आशीर्वाद से कुछ न कुछ करता रहा। लेकिन जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में है, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवा का,

डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए?

और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हां,
चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। और न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया के सबसे एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आज सफलता के साथ भारत काम कर रहा है। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, सुन लीजिए, धरती से चंद्रमा की जितनी दूरी है उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा

आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज पैसा रखना है तो डिजिटल वॉलेट है, डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डिजी लॉकर है, ट्रेवल करना है तो डिजी यात्रा है, हेल्थ केयर का लाभ लेना हो तो डिजिटल हेल्थ आईडी है। साथियों, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। ।2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है। पिछले वर्ष ही भारत में 125,000 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं। साथियों, भारत चिप मेकिंग में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़े कदम उठा रहा है। अभी भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स पर काम चल रहा है। इनमें से 2 प्लांट्स में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, यानी अब चिप भी डिजाइन इंडिया, मेड इन इंडिया होगी। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई?

असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित है, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए
यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एम्बिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़े चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदाम नूरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों,

जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है और इस वर्ष तो हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नीदरलैंड भी है और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है। ये बात पक्की है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी। साथियों, भारत और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत आप सभी है। आप इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु है, जीवंत ब्रिज है। इसलिए भारत सरकार ने सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है।

मैं इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इतने गर्मजोशी भरे वेलकम के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: High Court declared the Bhojshala verdict. NDTV is reporting from Ground Zero. Here's what the situation looked like this morning.
1: I'm Sujarita Kukreti and I'm present at the Dhar Bhojshala after the historic verdict given by the Madhya Pradesh High Court, which clearly said that the Bhojshala is a temple and not a mosque and therefore allowed the devotees to offer prayers. And ever since I have arrived, I am seeing the devotees come to Bhojshala, offer prayers. There are a number of people who've gathered here, and let me go and speak to them, because this is the exact place where they say is the Garbhagriha, where they will be getting the goddess Vagdevi from London, and the statue of the goddess would be put up here in the Sanctum Sanctorum, which is the Garbhagriha of the temple. And as you can see, there are a number of devotees who've been here at the Bhojshala, very, very happy that they've been allowed to offer prayers at the Bhojshala, and the court has finally recognized that this is a place of devotion for the Hindus. So let me just speak to them. I also have the petitioner, Mr. Jain, here with me. Jain saab, aapne isme yachika dair ki thi. Mujhe ye bataiye, aaj aap is garbhagriha ko taiyar kar rahe hain ki aapki devi ki pratima yahan aakar sthapit ho.
2: Garbhagriha to taiyar tha. Haan. यहाँ आके हमेशा पूजा होती थी, हर मंगलवार के हम पूजा अर्चना करते थे, बसंत पंचमी आती थी, इसको दुल्हन से सजा देते थे पूरा मंदिर को. और आज जो हुई, जो हाईकोर्ट से कल जो हमें अनुमति मिली हिंदू समाज को कि पूर्ण रूप से मंदिर है माँ का और हम हमें आके पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है. ये खुशी के पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ हमारा. ये संघर्ष हमारा 1952 से चल रहा था. शुरू में नारकर जवान ने इनको नमाज पढ़ने का एक दिन का समय दिया था, इन्होंने कब्जा करा. हमारे हिंदू महासभा के जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने उठा के बाहर फेंका इनको और नमाज नहीं पढ़ने दी. 80 तक यह नमाज नहीं, नमाज बाहर होती थी. बाहर मटन मार्केट लगता था और नमाज होती रविवार को मटन मार्केट लगता था हिंदू समाज आने में.
1: फिर ये लड़ाई कब शुरू हुई?
2: ये लड़ाई तो हमारी लड़े नहीं उनसे, हम हमारी पूजा अर्चना करते थे. दिव्य सरकार रही 97 में, उन्होंने हिंदू समाज पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया कि आप आपके जाके मंगलवार पूजा अर्चना नहीं कर सकते.
1: मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि जो जैन साहब बता रहे हैं, द डेवोटीज हियर वर अलाउड टू वर्शिप, बट देर वॉज एन ऑर्डर दैट केम आउट दैट टोल्ड देम दैट दे विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स ऑन अ ट्यूजडे, विच दे हैड बीन डूइंग फॉर डेकेड्स. सो दिस एंटायर प्लेस दैट वॉज देन वेकेटेड एंड इट वॉज द डेवोटीज वर टोल्ड दैट दे विल नॉट नो लॉन्गर बी अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स. दे वेरी क्लियरली ब्लेमिंग द दिग्विजय गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, एंड देन देर वॉज अ रूलिंग दैट केम विच basically allowed them, they took out that ban which was put on offering prayers, and after that they have been regularly praying here on Tuesdays and also on Saraswati Puja. Kitne baar yahan vivad hua hai, yahan par tanav hua hai iski wajah se?
3: Hamara musalmanon se koi vivad nahi hai. यहाँ पर सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण यहाँ पर दिग्विजय सिंह सरकार ने हिंदू समाज को
1: मतलब
3: यहाँ प्रतिबंधित किया.
1: पूजा होती रही थी उस पर एक तरह से बैन जब लगाया तो उससे गुस्सा बढ़ा.
3: वो दिग्विजय सिंह सरकार ने यहाँ पर तुष्टीकरण नीति के कारण यहाँ पर प्रतिबंध लगाया हिंदुओं.
1: अच्छा, यहाँ पर जब ये ASI का सर्वे शुरू हुआ, लोग कहते हैं कि उमा भारती जी की बड़ी भूमिका थी उसमें.
3: जी, उनके कार्यकाल में यहाँ पर ये जितने भी पिलर है उनके ऊपर जो इन्होंने सीमेंट से और चूने से जो इन्होंने बंद रख करके रखे थे उसकी धुलाई हुई और उसमें ये सारे प्रमाण निकले कि ये भोशाला का मंदिर है.
1: अच्छा, तो जो आप बात बता रहे हैं, लेट मी जस्ट शो इट टू माय व्यूअर्स आल्सो. नाउ यू विल वेरी क्लियरली सी सम पिलर्स व्हिच हैव नाउ दीज आर द पिलर्स दैट दे से वर ब्रोकन डाउन एंड द स्टैचूज दैट वर कार्व्ड आउट ऑन दीज पिलर्स वर ब्रॉट डाउन. And that was a way to bring down the temple, to basically erase the identity of the temple here at the Bhojshala. And some of the pillars are still there. Like if you see this pillar, you will see the carvings on it even now. Very clearly, the carvings tell a story. And the story is very, very clearly speaking out for itself that the Bhojshala was a temple where people were offering prayers. And according to historical facts and according to certain historical papers, very clearly Bhojshala, which was made by Raja Bhoj for offering prayers to Ma Saraswati. So now you will see the Saraswati carvings in goddess Saraswati carvings in a lot of these pillars, and some of them have been erased.
0: From Madhya Pradesh, let's now tell you what's happening in the state of West Bengal, where a political firestorm has erupted around TMC MP Abhishek Banerjee, with an FIR now being filed over his alleged remarks against the Union Home Minister Amit Shah during the election campaign. Now, the complaint accuses Abhishek Banerjee of making inflammatory and provocative statements targeting the Home Minister, triggering a major political showdown. The TMC MP has now officially been booked. The FIR invokes a series of serious charges, including inciting riots, spreading hatred, issuing threats, citing fear, and allegedly disrupting communal harmony. Now, investigators are also examining claims that misleading statements were made during the campaign speeches. Here are reactions coming in from the BJP and the TMC on that.
4: चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता. पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको, और होगा.
5: Attempted political vendetta during election time in public speeches. Statements are made by people, speeches are made by people. I have seen the so-called statement by Abhishek Banerjee. I did not find it offensive. I am sure that Abhishek Banerjee would take legal steps against the same.
6: Amit Shah ji must realize that in an election campaign, Abhishek Banerjee spoke within parameters and within constitutional parameters. And I will give you at least 100 instances where Yogi Adityanath, Anurag Thakur and Amit Shah ji himself have spoken in a way which amounts to criminal act. If a case against Abhishek Banerjee can be filed again under BNS, I am willing to file a case against Amit Shah ji in BNS. He should be also hauled to the Calcutta police stations.
0: And with that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and updates continue.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज़ रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। Across the country,
2: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
8: so many attacks,
7: the chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।

0: and its partners of over 270 plus NGOs is fighting this crime on the ground every day. On the show today, we look at the work of three of these NGOs whose relentless year-round work intensifies into a massive training and awareness campaign in the days leading up to Akshaya Tritiya, proving that constant vigilance is key to ending this crime. In Rajasthan's Ajmer district, the movement for change has been gathering momentum. Organized by Rajasthan Mahila Kalyan Mandal, these sessions do more than mobilize all the stakeholders on a unified platform. They speak directly to those whose future is most at stake, the children themselves. Apart from high-level strategy, school rallies like these ones educate children on their fundamental rights and provide them the tools to protect their own autonomy, turning potential victims into active defenders of their destiny.
1: तो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और राजस्थान महिला कल्याण मंडल के द्वारा जो ये कैंपेन एक सघन रूप से गांव में चलाया गया है, उससे निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं कि एक चौथाई की बाल विवाह की घटनाएं हो रही हैं या उनमें बहुत भारी स्तर पर कमी आई
0: है। The strength of the Child Marriage Free India campaign lies in the women, children, the faith leaders, teachers, law enforcement agencies, community health workers, Panchayat Sachivs, CMPOs who lead the charge. Every stakeholder plays a vital role and their collective efforts ensure a strong line of defense against child marriage.
2: Akshaya Tritiya ke samay hum log high alert mode pe rehte hain. Hum pehle to ye karte hain jaise hamara roster jari hota hai to hum log har sambandhit thane mein ek roster dal dete hain pure zile ke andar ki wo log bhi high alert mode pe aa jaye kabhi bhi koi bhi aisi suchna mile to bilkul active ho jaye aur CWC ko suchit kare turant jaise hi hamare paas suchna aati hai aur hum turant action mode pe aa jate hain hum log pichle 8 varsh mein humne bal vivah ko rokne ke liye bahut athak prayas kiye hain hum logon ne sari jagrukta phailayi hai humne jab ADR mein jab hamare paas meetings hoti thi to hum wahan jate the kabhi sarpanch se humne baat kari hai kabhi schoolon mein baat kari hai jo parivar hamare samaksh aate honge counseling kariye koshish puri hai rahi ki बाल विवाह से बच्चों का बचपन बिगड़े ना बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे।
3: भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान बाल विवाह मुक्त भारत के समर्थन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला प्रशासन जिला पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस एवं महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर NGO के साथ मिलकर के एक साझा प्रयास किया जा रहा है जिसमें हमारे द्वारा पिछले एक वर्ष में लगातार लोगों को विधिक जागरूकता कैंपों शिविरों के माध्यम से बाल विवाह के बारे में उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में उससे नुकसानों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है समझाया जा रहा है
0: At the heart of this fight against child marriage stand local NGOs like Rajasthan Mahila Kalyan Mandal, a partner of Just Rights for Children, coordinating with different agencies and teams across different fronts.
1: दो मुख्य रूप से इसमें हम लोगों ने काम किया है पहला जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिसमें सरपंच हैं गवर्नमेंट टीचर हैं आंगनवाड़ी वर्कर हैं मेडिकल वर्कर हैं क्योंकि इनकी भूमिका एक बाल विवाह में बहुत रहती है तो इनके स्तर पर एक काम किया गया है और उसमें एक उल्लेखनीय जो डिसीजन राजस्थान हाईकोर्ट का आया कि बाल विवाह अगर गाँव स्तर पर होता है तो उसमें वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी इसका बहुत अच्छा प्रभाव ग्राउंड लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है और बाल विवाह के स्तर में गिरावट आ रही है दूसरा जो राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने काम किया वो परिवार के स्तर पर किया जिन भी परिवारों में ये संभावना या हमको वो डाउट होता है कहीं से सूचना मिल जाती है कि बाल विवाह होने वाला है वहाँ हमारी टीम जाकर उनसे एक अंडरटेकिंग लेती है कि अगर आपने बाल विवाह किया तो इसके आपके दुष्परिणाम आपको भोगने होंगे दूसरा करीब 10.5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने कम्युनिटी अवेयरनेस के माध्यम से हर व्यक्ति से प्रतिज्ञा पत्र भरवाया है कि मैं अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करूँगा और कोई भी बाल विवाह कहीं करता है तो उसमें मैं सपोर्ट नहीं करूँगा इससे भी एक जन जागरूकता का एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ है और बाल विवाह के स्तर में कमी आई
2: देखिए स्थायी NGO जो स्थानीय NGO होते हैं वो CWC के लिए एक आँख और कान का मान लीजिए हम सिम्बोलिक करते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वही लोग होते हैं उन्हें जैसे सूचना मिलती है वो हमारे पास लेकर आते हैं और रेस्क्यू करवाने में हेल्प करवाते हैं तो NGO ही पहली वो कड़ी होती है जो हमारे समक्ष बच्चे की फरियाद लेकर आती है जो बताता है कि बच्चा वहाँ पर मुश्किल में है या यहाँ इस बच्चे के साथ ये चीज़ हो रही है चाहे चाइल्ड मैरिज हो

0: बाल भिक्षावृत्ति हो चाहे कुछ भी और हो, तो एनजीओ का सहयोग हमारे लिए बहुत सही रहता है और हम लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। हम बाल कल्याण अधिकारी जो संबंधित बाल थाने में होते हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं और एनजीओ की भी हेल्प लेते हैं।
1: देखिए एनजीओ का हमारे उसमें तालमेल बहुत, हमें सहयोग उनसे मिलता है क्योंकि हमारी माननीय रालसा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इन सब की टीम जो पैरालीगल वॉलंटियर पीएलवीज के रूप में काम कर रही है, जो ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रही है, उसको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें तुरंत प्रभाव से हमें बताती है, ऑफिस में सूचना देती है और हम प्रशासन के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त एनजीओ जो हैं वो भी ग्रास रूट लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो एनजीओ को भी यदि सूचना मिलती है तो वो भी हमें सूचित करते हैं और पब्लिक को अवेयर करने का काम और बाल विवाह को रोकने की सूचना देने की इन सारे कामों में एनजीओ का सहयोग हमारे को बराबर मिलता रहता है, अपेक्षित है, और उनके सहयोग से भी हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर रोकथाम लगा पाते हैं।
2: Another key piece of information that the Rajasthan Mahila Kalyan Mandal has worked to decimate in Ajmer district is about the national toll-free helpline 1098. For many in these communities, this number is the most direct link to child protection services. By integrating 1098 into their local awareness sessions, the NGO ensures that residents are not just aware of the law, but are equipped to use it. The counselors are responsive and trained to provide a bridge between informants and legal authorities.
3: ये सर आउटरीच के माध्यम से भी पहुंचती है और जो बुक्स है अपने राजस्थान के अंदर उन सभी जगह उन बुकों के पीछे 1098 का चित्र है, उसके माध्यम से भी पता चलता है। और हमारी टीम जो चाइल्ड हेल्पलाइन अजमेर की टीम है, तो हम आउटरीच के माध्यम से स्कूल, स्टेट एरिया और मार्केट के अंदर 1098 का प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें पैम्पलेट देना और 1098 से बच्चा किस प्रकार अपनी हेल्प ले सकता है उसका हम आउटरीच करते हैं।
2: These outreach programs by Rajasthan Mahila Kalyan Mandal are not standalone events, rather a year-round consistent awareness and knowledge generation with the community. These programs include organizing awareness and pledge activities in schools, keeping a track of school dropouts to ensure that they are not forced into child marriage, and linking families to government schemes. These efforts bring together stakeholders on all four levels: village, gram panchayat, block and district, building a holistic ecosystem which propels the movement forward. The sustained momentum does move the needle, yet the journey is fraught with its own share of challenges.
1: हमारे द्वारा विधिक जागरूकता कैंप लगाए जाने के बावजूद भी लोगों में जागरूकता फैली है, अपराध में कमी आई है, फिर भी कुछ लोग बड़ा एडमेंट हैं, वो भी फिर भी इस अपराध को करने की कोशिश करते हैं। कुछ अज्ञानता, इलिटरेसी भी है और कुछ लोगों के कस्टम्स के नाम पे और वो बाल विवाह करने में रहते हैं। इससे हम वो चोरी छुपे जब करते हैं या सामूहिक विवाह करते हैं या हमको पता नहीं चलता है या हम जाकर हमारा पीएलवी या कोई सूचना हमें दी जाती है तो उसको प्रोटेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी चुनौती के रूप में हैं।
2: From Rajasthan, we travel southeast into the heart of Jharkhand's Godda district. Godda is home to numerous indigenous tribes. Most of these communities rely on agriculture and forest produce for their livelihood. When poverty pushes families to the brink, children often pay the price, forced into early marriages as means of survival.
4: कुछ ऐसे सामाजिक कारण हैं जिसके कारण ये दर टू दर पीढ़ी दर बाल विवाह होते आ रहा है और बाल विवाह के प्रति ये अनुभव है कि लोग बेटियों को अपना बोझ समझ रहे हैं और इस कारण से शिक्षा पूरी करने के बजाय बच्चों की शादियां कर दिया करते हैं। खासकर हम गोड्डा की बात करें तो पिछले 10-12 साल से यहाँ पे हमने बाल विवाह के दर को कम करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। उसमें सबसे पहला चीज़ है, हमने किशोरियों का सेशन किया है, उनके अभिभावकों का सेशन किया है, हमने वैसे वंचित बच्चों को जो स्कूल से ड्रॉप आउट है उनसे उनको जोड़ने का काम किया है, साथ साथ हम सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। ये चुनौतियाँ, ये चैलेंजेज आपको

0: उस दिन देखने को मिलेगा। हमने कई फेस ऐसे किए हैं जब शादी तय हो गई है, बारात आने वाली है और उसकी सूचना हमें मिली है। और इस तरह के कम गोड्डा जिला में पिछले 3 साल में हमने दर्जनों शादियां रोका है जब बारात आने की सूचना हो जाती है उस क्रम में।
1: Confronting this reality requires more than just intervention. It requires a unified front. And that is why the NGO Sathi convened a high-level meeting in Godda ahead of Akshaya Tritiya, bringing together child marriage prohibition officers, Anganwadi workers, and leaders from Panchayati Raj institutions. By apprising each of the stakeholders of their specific legal and social roles, the campaign transforms individuals and institutions into a collective shield. Central to this strategy are the Kishori Samuhs, empowered groups of adolescent girls mentored by Anganwadi workers. Here, the girls find a safe space for health checkups with local sahiyas and auxiliary nurse midwives or NMs, gaining the knowledge of bodily autonomy to advocate their own futures.
2: हाँ, पहले तो होता था, लेकिन अभी बहुत सुधर गया है। पहले होता था, लाठीबाड़ी में होता था पहले, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा है। करीब 3-4 साल से, मैंने अभी उतना कम उम्र में शादी नहीं हो रहा है। बताए भी हैं और जानकारी हो रहा है, इसीलिए हम लोग बताते भी हैं, बोलते भी हैं, गार्जियन से भी मिलते हैं। सहयोग मिलता है कि हाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद योग होगा, उसके बाद ही शादी देंगे, ऐसे बोलता है।
1: साथी एनजीओ अ जीआरसी पार्टनर इज एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन झारखंड। दिस फाइट इजंट लिमिटेड टू द वीक्स लीडिंग अप टू अक्षय तृतीया। इट इज अ ईयर राउंड क्रूसेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, कैंडल मार्चेस, चिल्ड्रंस रैलीज एंड प्लेज सेरेमनीज। साथी इज वर्किंग टू शिफ्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ एंटायर कम्युनिटीज।
3: पूरे पंचायत में जहाँ भी शादी होती है, लगभग लोग हम लोगों को निमंत्रण भी देती है। तो जैसे निमंत्रण देते हैं तो हम लोग उसके अभिभावक से तुरंत पूछते भी हैं कि आपकी बच्ची या बेटा का क्या उम्र है।
1: After the break, we will see how this heightened awareness is translating into affirmative action. It is a movement that is not only changing mindsets across these villages, but is empowering communities to use the rule of law to prevent child marriage before it occurs.

0: for that. Mr. Chaugyal, you know, I would like you to come in here. Sahil just spoke about the first World Toilet College in 2018, right? But when we look at Ladakh, you know, when the World Toilet College, Harpic, you know, was being envisioned for Ladakh in 2022, what really made Leh the right place for it? What are the challenges which Leh faces when it comes to sanitation compared to rest of India, which we really don't know, which we're not aware of?
1: Thank you for, first of all, I'd like to thank you for the NDTV for inviting. Yes, challenging is in Leh because it's a very high altitude, you know, minus 26 degrees. So it's quite difficult for keeping hygiene problems because it's the weather is very challengeable things. And when the Harpic toilet started in 2022, we have already connected with the villages, Lambadar, and women associations, and all those things. So we have already, they already did a lot of sanitizer worker training and a lot of, you know, education programs.
0: You know, aapne training ki baat ki, Ayushman, you know, we've just heard Mr. Chaugyal speak about the training, you know, why, how important it is, and it also helps them besides dignity, of course, safety and infrastructure. Isliye main ek baar apne darshakon ko batana chahungi, I want to go back to the data which I said right at the beginning. According to the Health and Safety of Sanitation Workers reports by Dahlberg Research, sanitation workers face a 30-year life expectancy gap. You know, due to the hazardous working conditions as well as social neglect, they're doing it for us, they're doing it for our country, right? How grateful are we for that? Sahil, tell us about this report and what is the impact that you've seen. We are going to go to our real heroes of today, which is Jaswinder, as well as, you know, we have Mr. Gaikwad. But before that, tell us the impact report, what it says.
2: So, like you rightly said, there is a 30 years, you know, potential gap in the life of a sanitation worker versus a regular individual. So the conversations earlier were moving around, you know, what are the causes of the death? We are moving that conversation from the causes of the death or the number of deaths to the loss of life years. You know, how many number of years are the sanitation workers losing and to what? And this study by itself is entirely unique. Nothing like this has been ever done. And eventually, what we'll be able to do is that we'll be able to take this to actually form policy level, you know, intervention, which will really help transform the lives of the sanitation workers, help set up systems in place which can actually, which are trackable, traceable, in order to enhance and extend the life of the sanitation workers.
0: और आपने बताया कि क्या काम किया जा रहा है उस क्षेत्र में, तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट पावर ऑफ एट प्रोग्राम की, जो एक ऐसा मॉडल है जो सैनिटेशन को सस्टेनेबल, सेफ और रिस्पेक्टफुल बनाता है. The Power of Eight is a joint initiative by Dettol and Harpic to tackle India's pressing hygiene and sanitation challenges. The program focuses on one of the most critical areas of impact, schools, where the future of India is shaped. Aligned with the Government of India's Swachh Vidyalaya program, the Power of Eight service addresses these gaps across eight key dimensions: funds, scheduled cleaning, manpower, supervisors, hygiene infrastructure, drain declogging, life tracker, school data. The initiative not only fills critical gaps in sanitation and hygiene, but also provides structured, dignified employment for sanitation workers. Building on the Harpic World Toilet Colleges, which equip sanitation workers with modern cleaning skills, safety training and dignified employment, the Power of Eight program ensures that schools are staffed with trained professionals, provided the right tools, protective gear and accountability systems to keep facilities clean on a regular basis. To bring about sustainable change, the program integrates interactive hygiene education in schools developed by Sesame Street, featuring India's first indigenous Muppets, Neela Jadugar and KK Kitano. Through engaging formats like pop-up books, comics, bookmarks, posters, wall paintings and curriculum sessions, children learn about cleaning toilets after use, hand washing with soap, respecting gender segregated toilets, supporting teachers and staff in reinforcing healthy habits. The Harpic Safe Sanitation Program is creating a model of impact that unites infrastructure, behavior change, and workforce development. By empowering sanitation workers and enabling healthier learning environments, the Power of Eight contributes to both India's sanitation mission and educational priorities, building a cleaner, safer future for children, teachers, and communities.
3: Jasinder ji, sat sri akal. Tusi Punjab to. Main aapse puchna chahta hu is program ke baad aapki health aur zindagi mein kya badlav aaya? Aap ek cancer warrior bhi hain.
4: जी सर, पहले तो सारे सत श्री अकाल जी. सर, जदों भी अपने घर दे विच कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे भी जैसे हम लोग घर में किसी को भी बीमार हो जाते हैं तो वो उस इंसान पे इफेक्ट भी होता है और परिवार में ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या घर का माहौल हो, जैसा भी हो. तो शुरू में मेरे को काफ़ी मायूसी थी जब मैंने मेरे को इस बीमारी के बारे में पता चला. तो मैंने उस भगवान से प्रेयर की और अपने बच्चों की तरफ भी देखा. तो उस टाइम उन मेरे को ये लगा कि मैंने अपने लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैंने को ठीक होना है. तो वह मैंने ठीक भी हुई और भगवान की कृपा से आज मैं काफ़ी स्ट्रांग भी हूँ. तो सर, जो हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के साथ जुड़ने से मेरे में आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है. तो मैं कॉन्फिडेंस, जो कमी कहते हैं ना, मैं आ जाती है घर के हालात देखने के बाद. तो मेरे को ये लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं और अपने हस्बैंड की कैसे हेल्प करूं, क्योंकि अब आपको उस बीमारी के दौरान खर्चा तो आपको पता है इस बीमारी में काफ़ी आ जाता है. तो हमारी जो कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी. तो अगर हमारी कोई हेल्प करना भी जाता था तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि मेरे में कमी रह गई है अगर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. तो अब जब मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ तो सर, मैं अपने बच्चों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने लगी हूँ, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही हूँ आज. लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ, खास करके हमारे जो रैकेट वे हैं, रवि सर हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. तो उनका ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे जैसे जो वर्कर हैं उनको कहीं पर भी पूछा नहीं जाता. सर, आज मैं आपके सामने इस मंच पर हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ, रैकेट की वजह से हूँ और रवि सर की वजह से हूँ. तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मेरे में जो बदलाव आया, सबसे बड़ा बदलाव जो मेरी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है सर. आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं स्कूलों में जाती हूँ, बच्चों की जो स्माइल होती है ना, वो उनको देखते तो मैं और भी ज़्यादा, मेरे में हौसला आ जाता है कि मैं जो सेवा कर रही हूँ वो मेरे को करनी है. बस मैं बच्चों को खुश रखना, उनको स्वस्थ रखना है, सब उनकी स्माइलें जो हम लोग देखते हैं तो उससे मेरे को तो बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है.
3: सुंदर जी, आपकी जो आप बीती है ना, वो ज़्यादा इंस्पायर करती है लोगों को, आपको और इंस्पायर करती है क्लीनिंगनेस की तरफ, हाइजीन की तरफ जाने के लिए. तो आपकी जीवन की यात्रा है बहुत इंस्पायरिंग है लोगों के लिए. रतन के पास आते हैं. रतन, आपने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा है, सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है आपने?
5: सर, सबसे पहले मैंने 2018 में जब ट्रेनिंग किया तो सबसे पहले वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से मुझे आत्मविश्वास मेरा बहुत सारा बढ़ा है, जो पहले नहीं था. और मेरा भी आत्मविश्वास से ऐसा मैं कर रहा हूँ कि मैं खुद सफाई कर्मचारी को हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से सिखाने का मुझे जो मौका मिल रहा है तो वो मौका मैं बहुत अच्छे से मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि सफाई कर्मचारी की तरफ मेरी तरफ देखने का जो नज़रिया था समाज का वो पहले नहीं था, जो अभी बहुत अच्छा दिख रहा है. और इस दौरान से मैं सफाई कर्मचारियों को और अच्छा सिखाने का मौका मुझे दे रहा है, तो मैं और अच्छा अच्छा सिखाने का उनको प्रयास कर रहा हूँ. और मुझे यहाँ पे जो मंच पे जो आने का जो मौका जो दिया, ये आज वह टॉयलेट कॉलेज दिया, क्योंकि मैं खुद एक सफाई कर्मी था. आज सफाई कर्मी और डायरेक्ट स्टेज पर आना ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे आज बहुत बड़ा मौका मिला है. तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रैकेट का और हमारे श्रीमान रवि सर का, कि जिन्होंने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया है, तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा.
0: Well, on that note, Ayushman, I think how opportunity brings amount of joy and changes lives. Our campaign talks about being the change. We are the change, right? But well, that's where the change really begins. On that note, we're going to be taking a really short break. So please don't go away.

0: the front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
1: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
1: In Istanbul.
2: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: Launch control. 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you...
6: Welcome back. You're watching NDTV Detol Banega Swasth India. The journey from manual scavenger to sanitation entrepreneur is truly the story of a new India. By bridging the life expectancy gap, you're not just helping individuals, we're strengthening the backbone of public health and the economy.
7: Exactly, Ayushman, because dignity is not charity. Dignity is a right. Agli baar, jab aap kisi sanitation worker ko dekhein, unhe sirf safai karamchari nahi, balki nation builders ki nazar se dekhein. Clean toilets are not just facilities. They shape education, health, and opportunity. And we should be grateful to the sanitation workers.
6: Absolutely.
7: For the work they do for all of us. Now, girls stay in school only when the toilets are clean, safe, and dignified.
6: And that dignity is protected every single day by sanitation workers who prevent diseases, reduce UTIs, and keep communities healthy. So, Sahil, I want to ask you, what are your findings of infections in schools in Patiala?
8: So, हमारी जो school findings हैं, they indicate that almost 30% of the school toilets are dysfunctional, and almost the same amount do not have the soaps in schools. Mm. And you know, that is quite a serious concern, because that leads to a number of infectious diseases like diarrhea, respiratory issues, and UTIs. So that, you know, entirely indicates that it's very important not just to have the toilet infrastructure in place, but that infrastructure needs to be functional, that infrastructure needs to be hygienic, and it needs to be available for the next person to use.
7: हमारे पास समय कम है जसविंदर जी आपसे हम पूछना चाहेंगे आपके जैसे जो इतने sanitation workers हैं आप उन्हें क्या message आप उन्हें कैसा कैसे उनका आप हौसला बढ़ाएंगे
9: मैम मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी हिराश मत होइए अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो हम लोग सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा ऐसी जारी रखनी चाहिए वैसे तो बच्चों को सबसे पहले हम लोग जो भी गंदगी होती है जो कीटाणु के बारे में हमारी जो टीम है वो बताती हैं तो उससे काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है बच्चों पे भी और माँ बाप पर भी तो वो हमें काफ़ी मेरे को ना वहाँ पे प्रशंसा पत्र भी देते हैं वो लोग अगर वह उनके पास जाती उनको बताते हैं हम लोग तो वहाँ पे लोग जो बच्चे हैं वो हमें भी बोलते हैं कि थैंक यू भी बोलते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो जो हमारे वर्कर हैं वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं हमारी पूरी टीम ये नहीं है कि यहाँ के पंजाब की है महाराष्ट्र की और यहाँ भी हमारा काम चल रहा है सैनिटेशन का तो वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको यही कहना चाहूँ कि आप मेहनत करते रहो तो आगे बढ़ते रहो थैंक यू
6: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रतन जी आपसे पूछना चाहता हूँ पहले तो ये बताना चाहता हूँ एक फिल्म की थी मैंने आर्टिकल 15 उसमें एक सैनिटेशन वर्कर को दिखाया गया था जहाँ पर एक मैनुअल स्कैवेंजर नाली के अंदर जाता है और वो बाहर आता है पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके पास वो गियर होता है व्हेन यू क्लीन समथिंग या फिर आपके पास प्रॉपर गियर होता है किसी भी सैनिटेशन वर्कर के पास ताकि बीमारियाँ कम हो आपका आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े ऐसा कुछ गियर होता है आपके पास
7: सेफ्टी किट के बारे में बात जो आपको दिया गया है
10: सेफ्टी
6: जी जी
10: उधर जो अभी जो ट्रेनिंग के बाद में जो हम उनको सेफ्टी के बारे में बताते हैं सेफ्टी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं
6: जी
10: क्योंकि जो ट्रेनिंग में हम उनको जो पढ़ाते उनका ऐसा नज़रिया है कि बाबा ट्रेनिंग लेते तो ये सेफ्टी के बारे में हमें जो बताते वो अभी अच्छा फील करते हैं
6: ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा है
10: जी जी बहुत फर्क पड़ा
6: फर्क पड़ा है
10: बहुत फर्क पड़ रहा है उनको कि हम जब बस्ते में जाते हैं मोबिलाइजेशन करते समय तो जब हम उधर जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग को आना चाहिए और आप हम अच्छे से हमको बर्ताव देते उधर अच्छा सिखाते अच्छा ट्रेनिंग देते तो इसलिए वो प्रॉन करते अच्छा कि हम आना चाहिए उधर तक
7: Obviously, safety brings a different aspect, right? Again, the confidence, you know what you're working in, where you're going in. Well, thank you so much. Aap sab apni journey share ki, Jaswinder ji, thank you so much. Thank you, Sahil. Thank you, Mr. Chogyal, for coming all the way and actually putting sanitation story on the map here on our campaign. Well, Ayushman, a truly healthy India is not built in hospitals. It is built in clean toilets, through protected workers, and with dignity at the center of health. The blue dot is not just a symbol of sanitation, it indeed and surely is a symbol of respect.
6: And sanitation workers are the guardians of our health, our dignity, and our future.
7: Thank you so much once again, Ayushman, for joining us in this very, very critical conversation. Thank you.
6: Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.

0: The Madhya Pradesh High Court has given a verdict stating that the disputed Bhojshala temple, Kamal Mola Mosque complex in Dhar, is actually a temple dedicated to Goddess Saraswati. Following the verdict, people entered the Bhojshala complex to offer prayers after the High Court declared the site a temple. The court also urged the Muslim community to approach the state government for allotment of separate land in the district for construction of a mosque. The Hindu devotees celebrated and offered prayers inside the complex. The Muslim side says it will move the Supreme Court and challenge the verdict. The Muslim side claims it is a 700-year-old mosque and the verdict should not stand. The Hindu side maintains that the site is a temple belonging to goddess Vagadevi.
1: Yeh nishchay hi ek aitihasik faisla hai. Dhar ki Bhojshala एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है। 1947 में रही है, भी रही थी। और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। यह तो ठीक है कि न्यायालय मुसलमानों के हितों का भी किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं। दोनों का ध्यान रखा गया है।
2: हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो एएसआई द्वारा कंडक्ट की गई साइंटिफिक स्टडी, जिसमें एएसआई ने 2100 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है, उसके आधार पर दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से भोजशाला का स्थान मंदिर का परिसर है, मां सरस्वती जी की देवी जी का स्थान का परिसर है। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
3: ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पेटिशनर के साथ थे। हम उम्मीद करते हैं कि जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा।
4: जानबूझ के चला है उनको इस देश में सनातन धर्म का राज लाना है और सनातन धर्म खाली मुसलमानों के, दलितों के या इनके खिलाफ है, क्रिश्चियनों के खिलाफ है, ऐसा मत समझिए। सनातन धर्म खाली ब्राह्मणों का धर्म है, बाकी जो बहुजन समाज के विरोध का धर्म है और वो यहाँ वो लाना चाहते हैं, इस देश की संविधान वो खत्म करना चाहते हैं।
5: आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द जजमेंट पास बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो कमाल मौला मस्जिद पे उन्होंने आज जो जजमेंट दिया, मैं समझता हूँ ये एरोनियस है। इसके अंदर बहुत सी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए

0: जजमेंट उन्होंने एसआर के पास कर दिया। फिलहाल जो हमको जानकारी मिल रही है वो यही है कि इस बुनियाद के ऊपर जजमेंट दिया एएसआई, वो गवर्नमेंट के साथ मिली भगत में काम कर रहा है। वहां के लोगों ने ये लगाया है कि एएसआई हमारे को पूछता भी नहीं था किस तरह सर्वे करना, बस अपने हिसाब से करके डाल दिया रिपोर्ट उन लोगों ने वहां पर। तो अभी देखिए सबको अपना अपना रीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मुझे यकीन है जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा तो जो इसमें एरर हुआ है वो एरर हट जाएगा और इंसाफ इंशाल्लाह ताला हमको मिलेगा।
1: ये जो रिपोर्ट आई है ये कुछ डेढ़ साल पौने दो साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीयत उल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था, तो बस यही कहना है इसको। अब वो तो अभी आ जाने दीजिए, वो उसका वो पढ़ेंगे उसके बाद।
2: लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया,
1: हाँ वो आ जाने दीजिए।
3: देखिए मस्जिद कमाल मौला का केस बहुत पुराना है और काफी टाइम से ये विवाद चल रहा था, एएसआई को देने के बाद से विवाद चल रहा है और आज हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया जिसमें उन्होंने एएसआई की को आधार मानते हुए एक दूसरे पक्ष को देने का कहा है। तो जो पक्ष लड़ रहा था उस पक्ष की और हमारी सबकी बात हो गई है और हम लोग सब मिलकर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नहीं अभी जब हम उस फैसले को अभी हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी हमारे पास ऑफर है, अभी हमको गुंजाइश है ना, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक जब तक नहीं आता तब तक मैं समझता हूँ कि प्रशासन को भी हैंडओवर नहीं करना चाहिए और शांति भी लोगों को बनाना चाहिए।
4: Let's also listen in to the pulse on the ground a day after the High Court Bhojshala verdict. NDTV reports from Ground Zero. Have a look at this report. I'm Sujarita Kukreti and I'm present at the Dhar Bhojshala after the historic verdict given by the Madhya Pradesh High Court, which clearly said that the Bhojshala is a temple and not a mosque and therefore allowed the devotees to offer prayers. And ever since I have arrived, I am seeing the devotees come to Bhojshala, offer prayers. There are a number of people who've gathered here and let me go and speak to them because this is the exact place where they say is the Garbhgrah, where they will be getting the goddess Vag Devi from London, and the statue of the goddess would be put up here in the Sanctum Sanctorum, which is the Garbhgrah of the temple. And as you can see, there are a number of devotees who've been here at the Bhojshala, very, very happy that they've been allowed to offer prayers at the Bhojshala, and the court has finally recognized that this is a place of devotion for the Hindus. So let me just speak to them. I also have the petitioner, Mr. Jain, here with me. Jain saab, aapne isme yachika dair ki thi. Mujhe ye bataiye, aaj aap is garbhgrah ko taiyar kar rahe hain ki aapki devi ki pratima yahan aakar sthapit ho.
5: Garbhgrah to taiyar tha.
4: Haan.
5: यहाँ आके हमेशा पूजा होती थी, हर मंगलवार के हम पूजा अर्चना करते थे, बसंत पंचमी आती थी इसको दुल्हन से सजा देते थे पूरा मंदिर को। और आज जो हुई, जो हाईकोर्ट से कल जो हमें अनुमति मिली हिंदू समाज को कि पूर्ण रूप से मंदिर है माँ का और हम हमें आके पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ये खुशी के पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ हमारा। ये संघर्ष हमारा 1952 से चल रहा था। शुरू में नारकर जवान ने इनको नमाज पढ़ने का एक दिन का समय दिया था, इन्होंने कब्जा करा। हमारे हिंदू महासभा के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने उठा के बाहर फेंका इनको और नमाज नहीं पढ़ने दी। 80 तक नमाज नहीं, नमाज बाहर होती थी, बाहर मटन मार्केट लगता था और नमाज होती रविवार को मटन मार्केट लगता था हिंदू समाज आने में।
4: तो फिर ये लड़ाई कब शुरू हुई?
5: ये लड़ाई तो हमारी लड़ी नहीं उनसे, हम हमारी पूजा अर्चना करते थे। दिव्य सरकार रही 97 में, उन्होंने हिंदू समाज पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया कि आप आपके जाके मंगलवार पूजा अर्चना नहीं कर सकते।
4: मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि जो जैन साहब बता रहे हैं, द डेवोटीज हियर वर अलाउड टू वर्शिप बट देर वॉज एन ऑर्डर दैट केम आउट दैट टोल्ड देम दैट दे विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स ऑन अ ट्यूजडे विच दे हैड बीन डूइंग फॉर डेकेड्स। सो दिस एंटायर प्लेस दैट वॉज देन वेकेटेड एंड इट वॉज द डेवोटीज वर टोल्ड दैट दे विल नॉट नो लॉन्गर बी अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स। दे वेरी क्लियरली blaming the Digvijay government of that time, and then there was a ruling that came which basically allowed them, they took out that ban which was put on offering prayers, and after that they have been regularly praying here on Tuesday.

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। इधर आ, इधर आ।
1: हेलो दी।
0: हेलो, कहाँ से आई तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना।
0: हैप्पी बर्थडे।
2: हाथ मिला।
3: थैंक यू।
0: चॉकलेट दे।
1: चॉकलेट दो। चॉकलेट कहाँ है तुम्हारा?
3: हेलो सुनीता,
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये।
1: और क्या,
0: मैं हाथ से नहीं खाऊँ। हाथ से खाऊंगे। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी। ये सोचेंगे ना न्यूट्रिशन फूड है। चाहिए
1: मेरे को स्पून।
0: मैं असम में पैदा हुई थी। मम्मी और भैया है, पापा तो छोड़ के चला गया।

0: जर्नी में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन वही स्ट्रगल लेकर अगर हम चलेंगे, अगर हम बोलेंगे कि यार मेरे पास आज बहुत ठंडी होता है, लोग बोलते हैं बहुत ठंडी है क्या करना है, अगर हम स्ट्रगल सोच के हम रह जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बोलते कि यार मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ, मुझे क्या करूँगी, लोग काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरे बेटी ब्लाइंड है, उसको मैं हॉस्टल नहीं उनको मैं हॉस्टल नहीं भेजूँगी, क्या वो क्या कर लेगी जाके, उसको वैसे भी शादी करके भेजना है। लेकिन ये जो सोच है ना, ये सोच कभी एक पेरेंट्स को नहीं रखना चाहिए।
1: जल्दी धो,
0: बच्चों को दे दो। नहीं नहीं, मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने खाना बनाना भी शुरू किया है। मैं सब कुछ बना लेती हूँ, नॉन वेज से लेकर वेज तक। हाँ धो ले, आ जाओ। शिखा मैम, बेंगलोर। कितने बजे निकलना है?
2: तो मैं किशोर से एक बार बात करूंगी, रुको।
0: ठीक है। ये इंडियन ड्रेस है, प्लेइंग ड्रेस, ड्रीम होता है हर किसी को, नहीं मिलता ये पहनने के लिए, लेकिन मुझे मिला है पहनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई लड़ता है इसको पहनने के लिए, और हर किसी का किस्मत नहीं होता है, लेकिन मेरे किस्मत ने मेरा साथ दिया। मुझे लगता है मेरा जर्सी नंबर 1 है। ठीक है सर, बाय बाय बाय बाय सबको, बाय, थैंक यू। बस स्टैंड पे जा रहे हैं मैम, मोटर टाउन से आज़ादपुर के लिए लेंगे, आज़ादपुर से जाएंगे बस नंबर 7578 तो मोती नगर डायरेक्ट मॉडर्न स्कूल, यहाँ से लेफ्ट। इसे अगले स्टैंड उतरना है। ट्रैवलिंग करना पसंद है मेट्रो से। हाँ जी हाँ जी।

मेरा बस नंबर 78 रहने से बता देना, 75 और 78। हाँ मोती नगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती यार, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। मैं मोती नगर उतार देना। असम में मेरा घर कठहतुली कछाड़ी गांव, 4 नंबर वार्ड। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन की पर्पज़ से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। मैं हॉस्टल में जब रहती थी मुंडिका जब रहती थी तो लड़कियां बातें करते थे कि तुमको हॉस्टल में तुम मतलब उन लोग बात करते थे कि मुझे अगले अगले स्टेट में जाना होता है, खेलना पड़ता है। तो मैंने भी बोला कि मैं भी जाऊँगी घूमने के लिए, तो मैं घूमने की पर्पज़ से गई थी। लेकिन उनमें ही मैम ने मेरा स्किल देखा, उसने मुझे बैटिंग करने के लिए बोला। मैंने बैटिंग किया तो उसने मेरा स्किल देखा तो उसने बोला कि तुम कर सकते हो, तुम कर लो। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मुझे मन नहीं करता है। हाँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकते हो, तो मैंने उससे मेरा कंटिन्यू हुआ है। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले लाइक नो वन वाज सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल बीइंग अ ब्लाइंड हाउ विल यू एबल टू प्ले, बट दैट आई शोन इनटू एक्शन।

Bridge, Barakhamba Modern School, Delhi. We have come here because before the World Cup, we have done practice. And as I am from Delhi team, all Saturday, Sunday, I come for practice. Because of this, I am winning the World Cup. This is the specs, the person who can see the light. After wearing this, he or she can't see anything. You can see fully discovered. So nothing is visible. Our game depends on three categories. Those categories are B1, B2, B3. B1, they are totally blind. B2, up to 3 meters. And B3, up to 6 meters. I like to bet. First, we need to just see the weight of the bat, which according to us. So this bat is perfect for me. And I'm just holding, as I am B1 category. So I can hold this way. Because when the ball comes directly, it will hit the stump. So before that, I just need to keep my left leg this. This is for all batsmen, B1, B2, B3. When the bowler says that ready, then I have to be ready with this position. So at the time when the bowler says that play, after just the, when they say the play, my bat should be like this. Because if we are not doing this also, no, the ball will come and hit to our bat. And as soon as the ball reach here, we need to just fully roll it. This is the position for B1. You can see the ball again, you can hear the sound also. This ball is the main thing through which we play. First, we need to focus on the sound. When the bowler says that ready bat, that means I'm ready. Like, so when the bowler says play, at the time play means the ball is relieved. Ball jab chhod dete hai na, to hum log ko at least hum ginti karte hai. Ginti karte hai aur awaaz mein awaaz matlab ball ki awaaz hum sunte hai, focus karte hai. Kabhi kabhi kya hota hai ki hum ball ki awaaz pata nahi chalta hai. To hum bat se nahi, hum takkar nahi laga sakte ball ko bat se. तो वही है, अभी हम दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपना मन में एक इशारा रखना है कि अच्छा लो अभी इसने बॉल छोड़ दिया, तो मतलब अभी आने वाला है. सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं. प्ले ब्लाइंड क्रिकेट जो कहा जाता है ना, उसके कीपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वो कौन देखता है? कीपर. जब हम बॉलिंग करते हैं, हम पहले स्टंप छू कर देखते हैं कि हम सीधा है कि नहीं. इतना डिस्टेंस रखना चाहिए. ये दिस इज़ द मेजरमेंट. हम जब बॉलिंग करते हैं तो कीपर को पूछते हैं कि हमारा हाथ सीधा है कि नहीं, इज़ इट आवर हैंड स्ट्रेट. सो चेक द कीपर. तो कीपर बोलेंगे राइट लेफ्ट, और कीपर पूरा स्ट्रेट कराएंगे उस हाथ को. तो स्ट्रेट करने के बाद तो हम मतलब तैयार है फेंकने के लिए. बोल रहा है हियर हियर हियर, मतलब इधर इधर इधर फेंको. तो वो डायरेक्शन देंगे हियर हियर हियर. उसके बाद हम रेडी बोल के प्ले बोल के फेंक देते हैं. प्ले. वाह वाह. व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम, मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूँगी, हाउ विल आई प्ले यार, इट्स सो टफ. व्हेन आई सो दैट गर्ल्स आर प्लेइंग, देन आई जस्ट फील माई सेल्फ दैट वाई आई कैन प्ले, आई ऑल्सो कैन प्ले. इफ दे आर एबल टू प्ले, देन आई ऑल्सो.

0: construction of a mosque. The Hindu side celebrated and offered prayers inside the Bhojshala complex. The Muslim side says it will move the Supreme Court to challenge the verdict. The Muslim side claims it is a 700-year-old mosque and the verdict should not stand. The Hindu side maintains that the site is a temple belonging to goddess Vakdevi.
1: ये निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है। धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है। 1947 में रही है, भी रही थी। और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। यह तो ठीक है कि न्यायालय ने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं। दोनों का ध्यान रखा गया है।
2: हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो ASI द्वारा कंडक्ट की गई साइंटिफिक स्टडी, जिसमें ASI ने 2100 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है, उसके आधार पर दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से भोजशाला का स्थान मंदिर का परिसर है, माँ सरस्वती जी की देवी जी का स्थान का परिसर है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
3: तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और ASI हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे। हम उम्मीद करते हैं कि जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा।
4: जानबूझ के चलाए उनको इस देश में सनातन धर्म का राज लाना है और सनातन धर्म खाली मुसलमानों के, दलितों के या इनके खिलाफ है, क्रिश्चियनों के खिलाफ है, ऐसा मत समझिए। सनातन धर्म खाली ब्राह्मणों का धर्म है, बाकी जो बहुजन समाज के विरोध का धर्म है और वो यहाँ वो लाना चाहते हैं, इस देश की संविधान वो ख़त्म करना चाहते हैं।
5: उस फैसले में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप लोग डेली कोई पूजन अंदर करिए। उन्होंने तो सिर्फ सरकार के हवाले ये काम को सौंप दिया है कि सरकार देखे। चूंकि इसी से ये साबित होता है कि कोर्ट के पास सरकार जाती है, कोर्ट कब से सरकारों के पास जाने लग गए। सरकार तो हर 5 साल में चेंज होती है, तो आप मुझे ये बताइए कि हर 5 साल में इसका नेचर डिसाइड होगा क्या? ये मंदिर मस्जिद हर 5-5 साल में बदलेगा? तो इसीलिए ये सवाल हमारा खड़ा है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सरासर एक तरफा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बातें सुन करके इस जजमेंट को नकारेगा और अपनी तरफ से कोई नया जजमेंट देगा।
0: Let's listen in to the pulse on the ground a day after the High Court gave the Bhojshala verdict. NDTV reports from Ground Zero. Here's a special report. I'm Sujarita Kukreti and I'm present at the Dhar Bhojshala after the historic verdict given by the Madhya Pradesh High Court, which clearly said that the Bhojshala is a temple and not a mosque and therefore allowed the devotees to offer prayers. And ever since I have arrived, I am seeing the devotees come to Bhojshala, offer prayers. There are a number of people who've gathered here, and let me go and speak to them because this is the exact place where they say is the Garbhagriha, where they will be getting the goddess Vagdevi from London, and the statue of the goddess would be put up here in the Sanctum Sanctorum, which is the Garbhagriha of the temple. And as you can see, there are a number of devotees who've been here at the Bhojshala, very, very happy that they've been allowed to offer prayers at the Bhojshala, and the court has finally recognized that this is a place of devotion for the Hindus. So let me just speak to them. I also have the petitioner, Mr. Jain, here with me. Jain saab, aapne isme yachika dayar ki thi. Mujhe ye bataiye, aaj aap is garbhagriha ko taiyar kar rahe hain ki aapki devi ki pratima yahan aakar sthapit ho.
6: Garbhagriha to taiyar tha.
0: Haan.
6: यहाँ आके हमेशा पूजा होती थी, हर मंगलवार के हम पूजा अर्चना करते थे, बसंत पंचमी आती थी इसको दुल्हन से सजा देते थे पूरा मंदिर को। और आज जो हुई, जो हाईकोर्ट से कल जो हमें अनुमति मिली हिंदू समाज को कि पूर्ण रूप से मंदिर है माँ का और हम आके पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ये खुशी के पीछे

0: संघर्ष हुआ हमारा।
1: हाँ,
0: ये संघर्ष हमारा 1952 से चल रहा था। शुरू में नारकर जवान ने इनको नमाज पढ़ने का एक दिन का समय दिया था, इन्होंने कब्जा करा, हमारे हिंदू महासभा के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने उठा के बाहर फेंका इनको, और नमाज नहीं पढ़ने दी। 80 तक यहाँ नमाज नहीं, नमाज बाहर होती थी, बाहर मटन मार्केट लगता था और नमाज होती रविवार को मटन मार्केट लगता था हिंदू समाज आने
1: में। तो फिर ये लड़ाई कब शुरू हुई?
0: ये लड़ाई तो हमारी लड़ी नहीं उनसे, हम हमारी पूजा अर्चना करते थे। दिव्य सरकार रही 97 में, उन्होंने हिंदू समाज पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया कि आप जाके मंगलवार पूजा अर्चना नहीं कर सकते।
1: मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि जो जैन साहब बता रहे हैं, द डेवोटीज हियर वर अलाउड टू वर्शिप बट देर वॉज एन ऑर्डर दैट केम आउट दैट टोल देम दैट दे विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स ऑन अ ट्यूजडे विच दे हैड बीन डूइंग फॉर डेकेड्स। सो दिस एंटायर प्लेस दैट वॉज देन विकेटेड एंड इट वॉज द डेवोटीज वर टोल्ड दैट दे विल नॉट नो लॉन्गर बी अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स। दे वेरी क्लियरली ब्लेमिंग द दिग्विजय गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम एंड देन देर वॉज अ रूलिंग दैट केम विच बेसिकली अलाउड देम, दे टुक आउट दैट बैन विच वॉज पुट ऑन ऑफरिंग प्रेयर्स एंड after that they have been regularly praying here on Tuesdays and also on Saraswati puja. Kitni baar yahan vivad hua hai, yahan par tanav hua hai iski wajah se?
2: Hamara musalmanon se koi vivad nahi hai, yahan par sarkar ki tushtikaran niti ke karan yahan par Digvijay Singh sarkar ne hindu samaj ko matlab
1: jo jo puja hoti rahi thi us par ek tarah se ban jab lagaya to usse gussa badha,
2: wo Digvijay Singh sarkar ne yahan par tushtikaran niti ke karan yahan par pratibandh lagaya hinduon.
1: Acha yahan par jab ye ASI ka survey shuru hua, log kehte hain ki Uma Bharti ji ki badi bhumika thi usme
2: ji, unke karyakal mein yahan par ye jitne bhi pillar hai unke upar jo inhone cement se aur chune se jo इन्होंने बंद रख करके रखे थे उसकी धुलाई हुई और उसमें ये सारे प्रमाण निकले कि भूशाला का मंदिर है।
1: अच्छा, तो जो आप बात बता रहे हैं, लेट मी जस्ट शो इट टू माय व्यूअर्स आल्सो, नाउ यू विल वेरी क्लियरली सी सम पिलर्स व्हिच हैव नाउ दीज आर द पिलर्स दैट दे से वर ब्रोकन डाउन एंड द स्टैचूज दैट वर कार्व्ड आउट ऑन दीज पिलर्स वर ब्रॉट डाउन and that was a way to bring down the temple, to basically erase the identity of the temple here at the Bhotshala. And some of the pillars are still there, like if you see this pillar you will see the carvings on it even now very clearly. The carvings tell a story and the story is very very clearly speaking out for itself that the Bhotshala was a temple where people were offering prayers and according to historical facts and according to certain historical papers, very clearly Bhotshala, which was made by Raja Bhoj for offering prayers to Ma Saraswati. So now you will see the Saraswati carving, goddess Saraswati carvings in a lot of these pillars, and some of them have been erased.
3: And NETV brings you exclusive visuals of what is believed to be the original Vagdevi statue from Bhotshala temple in Dhar, Madhya Pradesh, now located at a London museum. And if the government of India formally seeks its return, the sculpture could soon find its way back home. Radhika Iyer with this report from London. Have a look.
4: From Dhar in Madhya Pradesh to here in central London, the story that broke out in a court in Madhya Pradesh which declared that the Bhotshala Mandir or the Bhotshala site in Madhya Pradesh is a Hindu temple is panning out here in a museum in London. NDTV's team has reached a museum in London, in central London, where we found the original statue of Vagdevi, goddess Vagdevi, who is supposed to be an avatar of Saraswati. The original statue, which was built by the Paramara king, and the one which was taken away from India, the 11th century statue, was found here by us. And I have found pictures, and what you're seeing on your screens are images of the original statue which I found. And I also did take a little printout to be able to describe to you what the original statue of Vagdevi looks like. It's a about 4 feet tall white marble statue weighing about 250 kilograms. Let me describe to you the goddess. Here is standing. Both her arms are broken. The face, very gentle, very polite, looking away, not looking into you, standing on a pedestal. And she's a four-armed goddess originally, but as I said, two of her arms are broken. And on the other

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी सो वेयर आर यू

0: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
1: I've
2: always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
3: TVK headquarters here.
4: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
5: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
6: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
7: The CBI probe has reached a crucial breakthrough with the investigating agency arresting the alleged kingpin behind the leak from Pune. Meanwhile, in the national capital, students' union staged protests over the leak and resignation of Union Minister for Education was also demanded. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, conducted special classes where he dictated questions and answers. As the probe intensifies, CBI is now on the lookout for two more professors who are believed to have aided Kulkarni in the leak gate. While we also get you voices from the ground, as there were multiple protests that broke out, NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in as to what he had to say.
8: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं. ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30 के, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ले रहे, मतलब पेपर के पहले, और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपये. और पेपर कब मिलेगा क्या नहीं, इसकी डिटेल आप देख सकते हो. और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप.
9: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपए की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
8: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को. मैं उसका मेंटर हूँ, मेरी मेंटर है. वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला. और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपए उनको दे भी दिए.
9: इस बात की सब आपके पास प्रूफ है?
8: उसका स्क्रीनशॉट है आप? हाँ, मतलब. और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को, मतलब इस ये सब चर्चा थी, बट मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है, ऐसा था. बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है. क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया, उसके बाद ये जो QR कोड है, वो QR कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको QR कोड भेज देते थे, और वो QR कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो PDF फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद उनको पेपर मिल जाएगा.
9: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
8: चाहिए? उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा. एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी रकम बहुत ज्यादा थी, मतलब 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसी रकम थी. बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000, 50,000, 60,000 ऐसे, जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया.
7: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radha Krishnan Committee and educationist Pankaj Bansal. Listen.
10: We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
11: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, mm-hmm. that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing. Mm. So that the dependency on paper and the movement of paper reduces or diminishes. That happened. Having said that, there are so many people, and there is a societal question that comes up, where people say that some of the students will get in a disadvantageous position because they may not be exposed to computers, mm-hmm. which is in today's time and age is not a very logical point to make. But still, we are a democracy. We have to take care of everything. So I think I'm very glad to hear that today morning Minister Pradhan announced that next year we will move to computer-based testing. So it should eliminate 95% of the problems anyway. Mm-hmm. Because this exam mafia is able to thrive and survive. For one big reason is that there are so many gaps on the paper movement, from printing to transportation to opening of papers to all those things. All that will get away. And this is, it'll be a big dent to exam mafia. Still, there'll be vulnerabilities. And I'm sure that NTA and its new avatar with the new leader on board will be able to take care of them.
7: And the recording of calls to a woman student at the Lucknow University brought to the fore her continued harassment by an assistant professor in the name of leaked examination papers. Among two angles pertaining to the case is the objectionable and derogatory phone conversation wherein undue favors were sought from a woman student, from a female student. Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
12: Sir, वैसे मैंने पढ़ तो लिया है वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था.
13: अच्छा तो मिलने नहीं होगी एक बार भी.
12: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
13: है. तो मतलब
14: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजापर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं. प्रकरण की विवेचना ACP महानगर के द्वारा की जा रही है. अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं.
7: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The political voice is on the story.
15: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है, RSS, BJP, और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है. प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए.
16: चुनौती है निश्चित रूप से. जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा.
7: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: like no one else, only on NDTV Network.
1: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
2: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
1: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dicoids up, aise mat kijiye. Suddenly, people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
3: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
2: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
4: What seems settled for me is unfinished business.
5: The CBI probe has reached a crucial breakthrough with the investigating agency arresting the alleged kingpin behind the leak from Pune. Meanwhile, in the national capital, students' union staged protests over the leak and resignation of Union Minister for Education was also demanded. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, conducted special classes where he dictated questions and answers. As the probe intensifies, CBI is now on the lookout for two more professors who are believed to have aided Kulkarni in the leak gate. Well, we also get you voices from the ground as there were multiple protests that broke out. NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in as to what he had to say.
6: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं. ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30K, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ये ले रहे, मतलब पेपर के पहले. और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपये. और पेपर कब मिलेगा क्या नहीं, ये इसकी डिटेल आप देख सकते हो. और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप.
7: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपये की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
6: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को. मैं उसका मेंटर हूँ, वो मेरी मेंटी है. वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है उस स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला. और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपये उनको दे भी दिए.
7: इस बात की सब आपके पास प्रूफ
6: है? उसका स्क्रीनशॉट है आप? हाँ, मतलब. और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को, मतलब इस ये सब चर्चा थी, बट मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है ऐसा था. बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है. ये क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया, उसके बाद ये जो क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको क्यूआर कोड भेज देते थे. और वो क्यूआर कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो पीडीएफ फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद उनको पेपर मिल जाएगा.
7: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
6: चाहिए? उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा. एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी रकम बहुत ज्यादा थी, मतलब 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसी रकम थी. बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक आफ्टर बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000, 50,000, 60,000 ऐसे जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया.
5: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radha Krishnan Committee and educationist Pankaj Bansal. Listen.
8: We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
9: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing, so that the dependency on paper and the movement of paper reduces or diminishes. That happened. Having said that, there are so many people, and there is a societal question that comes up, where people say that some of the students will get in a disadvantageous position because they may not be exposed to computers, which is in today's time and age is not a very logical point to make. But still, we are a democracy. We have to take care of everything. So I think I'm very glad to hear that today morning, Minister Pradhan announced that next year we will move to computer-based testing. So it should eliminate 95% of the problems anyway, because this exam mafia is able to thrive and survive. For one big reason is that there are so many gaps on the paper movement, from printing to transportation to opening of papers to all those things. All that will get away. And this is, it'll be a big dent to exam mafia. Still, there'll be vulnerabilities. And I'm sure that NTA and its new avatar with the new leader on board will be able to take care of them.
5: And the recording of calls to a woman student at the Lucknow University brought to the fore her continued harassment by an assistant professor in the name of leaked examination papers. Among two angles pertaining to the case is the objectionable and derogatory phone conversation wherein undue favors were sought from a woman student, from a female student. Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
10: सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था
11: अच्छा तो मिलने नहीं होगी एक बार भी
10: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
11: है मतलब within 7 days
12: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजापर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं प्रकरण की विवेचना एसीपी महानगर के द्वारा की जा रही है अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं
5: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The political voices on the story.
13: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, RSS, BJP. और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए
14: चुनौती है निश्चित रूप से जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा
5: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: Economy, business, world, technology.
1: Noise filtered.
0: Numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
2: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
3: Let's do it. Let's do it. Let's start.
4: Big news that we're breaking first here on NDTV.
5: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
6: The CBI probe has reached a crucial breakthrough with the investigating agency arresting the alleged kingpin behind the leak from Pune. Meanwhile, in the national capital, students' union staged protests over the leak and resignation of Union Minister for Education was also demanded. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, conducted special classes where he dictated questions and answers. As the probe intensifies, CBI is now on the lookout for two more professors who are believed to have aided Kulkarni in the leak gate. While we also get you voices from the ground, as there were multiple protests that broke out, NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in as to what he had to say.
7: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं. ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30K, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ये ले रहे, मतलब पेपर के पहले. और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपये. और पेपर कब मिलेगा क्या ना, ये इसकी डिटेल आप देख सकते हो. और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप.
8: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपए की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
7: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को. मैं उसका मेंटर हूँ, वो मेरी मेंटी है. वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला. और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपए उनको दे भी दिए.
8: इस बात की सब आपके पास प्रूफ
7: है? उसका स्क्रीनशॉट है आप? हाँ, मतलब. और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को, मतलब इस ये सब चर्चा थी, बट मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है ऐसा था. बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है. ये क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया उसके बाद ये जो QR कोड है, वो QR कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको QR कोड भेज देते थे. और वो QR कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो PDF फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद उनको पेपर मिल जाएगा.
8: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलेगा
7: जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा. एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी रकम पहुंच जाता थी, मतलब 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसी रकम थी. बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000, 50,000, 60,000 ऐसे जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया.
6: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radha Krishnan Committee and educationist Pankaj Bansal. Listen.
9: We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
10: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is the one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing. Mm-hmm. So that the dependency on paper and the

0: behind the leak from Pune. Meanwhile, in the national capital, students' union staged protests over the leak, and resignation of Union Minister for Education was also demanded. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, conducted special classes where he dictated questions and answers. As the probe intensifies, CBI is now on the lookout for two more professors who are believed to have aided Kulkarni in the leak gate. Well, we also get you voices from the ground, as there were multiple protests that broke out. NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in as to what he had to say.
1: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं. ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30K, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ये ले रहे, मतलब पेपर के पहले. और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपये. और पेपर कब मिलेगा क्या नहीं, ये इसकी डिटेल आप देख सकते हो. और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप.
2: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपये की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
1: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को. मैं उसका मेंटर हूँ, वो मेरी मेंटी है. वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है उस स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला. और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपये उनको दे भी दिए.
2: इस बात की सब आपके पास प्रूफ
1: है? उसका स्क्रीनशॉट है आप? हाँ, मतलब. और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को, मतलब इस ये सब चर्चा थी, बट मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है ऐसा था. बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है. ये क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया, उसके बाद ये जो क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको क्यूआर कोड भेज देते थे. और वो क्यूआर कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो पीडीएफ फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद उनको पेपर मिल जाएगा.
2: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
1: चाहिए? उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा. एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी रकम पहुंच जाता है, मतलब 25 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसी रकम थी. बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक आफ्टर बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000 50,000 60,000 ऐसे जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया.
0: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radhakrishnan committee and educationist Pankaj Bansal. Listen.
3: We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
4: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing, so that the dependency on paper and the movement of paper reduces or diminishes. That happened. Having said that, there are so many people and there is a societal

0: 95% of the problems anyway. Because this exam mafia is able to thrive and survive for one big reason is that there are so many gaps on the paper movement, from printing to transportation to opening of papers to all those things. All that will get away. And this is, it'll be a big dent to exam mafia. Still, there'll be vulnerabilities, and I'm sure that NTA and its new avatar with the new leader on board will be able to take care of them.
1: And the recording of calls to a woman student at the Lucknow University brought to the fore her continued harassment by an assistant professor in the name of leaked examination papers. Among two angles pertaining to the case is the objectionable and derogatory phone conversation wherein undue favors were sought from a woman student, from a female student. Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
2: Sir, वैसे मैंने पढ़ तो लिया है वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था.
3: अच्छा तो मिलने नहीं होगी एक बार भी.
2: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
3: है. मतलब
4: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजापर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं. प्रकरण की विवेचना ACP महानगर के द्वारा की जा रही है. अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं.
1: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The political voices on the story.
5: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है, RSS, BJP. और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है. प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए.
6: चुनौती है निश्चित रूप से. जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा.
1: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: ఎట్లా చలోరి.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma.
5: The CBI probe has reached a crucial breakthrough with the investigating agency arresting the alleged kingpin behind the leak from Pune. Meanwhile, in the national capital, students' union staged protests over the leak and resignation of Union Minister for Education was also demanded. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, conducted special classes where he dictated questions and answers. As the probe intensifies, CBI is now on the lookout for two more professors who are believed to have aided Kulkarni in the leak gate. While we also get you voices from the ground, as there were multiple protests that broke out, NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in as to what he had to say.
6: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं. ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30K, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ये ले रहे हैं, मतलब पेपर के पहले. और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपये. और पेपर कब मिलेगा क्या ना, ये इसकी डिटेल आप देख सकते हो. और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप.
7: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपए की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
6: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को. मैं उसका मेंटर हूँ, वो मेरी मेंटी है. वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है, वो स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला. और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपए उनको दे भी दिए.
7: इस बात की सब आपके पास प्रूफ
6: है? उसका स्क्रीनशॉट है आप. हाँ, मतलब. और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को. मतलब इस ये सब चर्चा थी, बट मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है ऐसा था. बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था. इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है. क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया, उसके बाद ये जो QR कोड है, वो QR कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको QR कोड भेज देते थे. और वो QR कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो PDF फाइल है, जो नीट का पेपर है, उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद उनको पेपर मिल जाएगा.
7: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
6: चाहिए? उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा. एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी रकम पहुंच जाता थी, मतलब 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसी रकम थी. बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000, 50,000, 60,000, ऐसे जितना जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया है.
5: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radha Krishnan Committee and educationist Pankaj Bansal. Listen.
8: We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
9: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is the one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing, so that the dependency on paper and the movement of paper reduces or diminishes. That happened. Having said that, there are so many people, and there is a societal question that

बनेंगे। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना ये हमारी गारंटी है। फ्रेंड्स, आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्केल की बात करें तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी

0: Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
1: सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था।
2: अच्छा, तो मिलने नहीं होगी एक बार भी?
1: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में, फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
2: है। तो मतलब within 7 days?
3: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हजापर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। प्रकरण की विवेचना एसीपी महानगर के द्वारा की जा रही है, अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं।
0: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The political voice is on the story.
4: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
5: चुनौती है निश्चित रूप से, जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा।
0: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: leader on board will be able to take care of them.
1: And the recording of calls to a woman student at the Lucknow University brought to the fore her continued harassment by an assistant professor in the name of leaked examination papers. Among two angles pertaining to the case is the objectionable and derogatory phone conversation wherein undue favors were sought from a woman student, from a female student. Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
2: सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था
3: अच्छा तो मिलने नहीं होगी एक बार भी
2: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
3: तो मतलब विद इन 7 डेज
4: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजापर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं प्रकरण की विवेचना एसीपी महानगर के द्वारा की जा रही है अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं
1: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The political voice is on the story.
5: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, RSS, BJP. और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए
6: चुनौती है निश्चित रूप से जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा
1: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
1: I've
2: always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
3: TVK headquarters here.
4: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
5: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
6: The CBI probe has reached a crucial breakthrough with the investigating agency arresting the alleged kingpin behind the leak from Pune. Meanwhile, in the national capital, students' union staged protests over the leak and resignation of Union Minister for Education was also demanded. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, conducted special classes where he dictated questions and answers. As the probe intensifies, CBI is now on the lookout for two more professors who are believed to have aided Kulkarni in the leak gate. While we also get you voices from the ground, as there were multiple protests that broke out, NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in as to what he had to say.
7: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं. ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30K, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ये ले रहे हैं, मतलब पेपर के पहले. और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपये. और पेपर कब मिलेगा क्या ना, ये इसकी डिटेल आप देख सकते हो. और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप.
8: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपए की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
7: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को. मैं उसका मेंटर हूँ, वो मेरी मेंटी है. वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है उस स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला. और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपए उनको दे भी दिए.
8: इस बात की सब आपके पास प्रूफ
7: है? उसका स्क्रीनशॉट है आप? हाँ, मतलब. और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को, मतलब इस ये सब चर्चा थी, पर मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है ऐसा था. बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है. क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया, उसके बाद ये जो QR कोड है, वो QR कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको QR कोड भेज देते थे. और वो QR कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो PDF फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद उनको पेपर मिल जाएगा.
8: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
7: चाहिए? उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा. एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी रकम बहुत ज्यादा थी, मतलब 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसी रकम थी. बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000, 50,000, 60,000, ऐसे जितना जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया है.
6: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radha Krishnan Committee and educationist Pankaj Bansal. Listen.
9: We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
10: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is the one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing. Mm. So that the dependency on paper and the movement of paper reduces or diminishes. That happened. Having said that, there are so many people, and there is a societal question that comes up, where people say that some of the students will get in a disadvantageous position because they may not be exposed to computers, mm-hmm. which is in today's time and age is not a very logical point to make. But still, we are a democracy. We have to take care of everything. So I think I'm very glad to hear that today morning, Minister Pradhan announced that next year we will move to computer-based testing. So it should eliminate 95% of the problems anyway. Mm-hmm. Because this exam mafia is able to thrive and survive. For one big reason is that there are so many gaps on the paper movement, from printing to transportation to opening of papers to all those things. All that will get away. And this is, it'll be a big dent to exam mafia. Still, there'll be vulnerabilities. And I'm sure that NTA and its new avatar with the new leader on board will be able to take care of them.
6: And the recording of calls to a woman student at the Lucknow University brought to the fore her continued harassment by an assistant professor in the name of leaked examination papers. Among two angles pertaining to the case is the objectionable and derogatory phone conversation wherein undue favors were sought from a woman student, from a female student. Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
11: Sir, वैसे मैंने पढ़ तो लिया है वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था.
12: अच्छा तो मिलने नहीं होगी एक बार भी.
11: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
12: है. मतलब Within 7 days?
13: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजापर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं. प्रकरण की विवेचना ACP महानगर के द्वारा की जा रही है. अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं.
6: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The political voices on the story.
14: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है जो सेंटर है उसको डैमेज किया है. ये एक नेक्सस है RSS, BJP और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है. प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए.
15: चुनौती है निश्चित रूप से. जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा.
6: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
1: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
2: TV ke headquarters here.
3: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
4: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
1: The CBI probe has reached a crucial breakthrough with the investigating agency arresting the alleged kingpin behind the leak from Pune. Meanwhile, in the national capital, students' union staged protests over the leak and resignation of Union Minister for Education was also demanded. Chemistry lecturer P.V. Kulkarni is believed to be the original source of the leaked paper and had access to NEET question papers through his role in the examination process. According to CBI, Kulkarni, along with the arrested aide Manisha Vaghmare, conducted special classes where he dictated questions and answers. As the probe intensifies, CBI is now on the lookout for two more professors who are believed to have aided Kulkarni in the leak gate. While we also get you voices from the ground, as there were multiple protests that broke out, NDTV spoke to MBBS student Deepak Patil, who revealed how the papers were leaked and sold before the exam took place. Listen in as to what he had to say.
5: ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं. ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30 के, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ये ले रहे हैं, मतलब पेपर के पहले. और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपये. और पेपर कब मिलेगा क्या नहीं, इसकी डिटेल आप देख सकते हो. और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो आप.
6: वो एक लड़की की भी चैटिंग जो आप बता रहे थे कि वो 30,000 रुपए की डिमांड हुई थी बुकिंग वाली, वो क्या है?
5: वो जो लड़की है जो हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लड़की मुझे अप्रोच की 6 अप्रैल को. मैं उसका मेंटर हूँ, वो मेरी मेंटी है. वो मेंटर के नाते मुझे पूछते कि सर हमारे पापा जहाँ काम करते हो ऑफिस के अंदर, वहाँ पे जो स्टाफ है, वो स्टाफ के अंदर का उस महिला का हस्बैंड है, वो

0: बोलता है उन्हें कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूँ, मैं नीट के पेपर के अंदर काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने सबसे शॉकिंग है कि उन्होंने 50,000 रुपए उनको दे भी दिए।
1: इस बात की सब आपके पास प्रूफ
0: है? उसको उसका स्क्रीनशॉट है आप? हाँ, मतलब, और भाई उसको बताया कि वो मैसेज उसका आया मुझे 6 अप्रैल को, मतलब इस ये सब चर्चा थी, बट मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मतलब ये फेक हो सकता है ऐसा था। बट पेपर जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है। क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया उसके बाद ये जो QR कोड है, वो QR कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको QR कोड भेज देते थे, और वो QR कोड मिलने के बाद, वो स्कैन करने के बाद, इस वो जो PDF फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद उनको पेपर मिल जाएगा।
1: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
0: चाहिए? उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उनको मिलेगा। एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसी रकम पहुंच जाता थी, मतलब 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसी रकम थी। बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, मतलब 1 वीक बिफोर एग्जाम, उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000, 50,000, 60,000, ऐसे जितना जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया है।
2: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radha Krishnan Committee and educationist Pankaj Bansal. Listen. We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
3: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is the one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing, so that the dependency on paper and the movement of paper reduces or diminishes. That happened. Having said that, there are so many people, and there is a societal question that comes up, where people say that some of the students will get in a disadvantageous position because they may not be exposed to computers, which is in today's time and age is not a very logical point to make. But still, we are a democracy. We have to take care of everything. So I think I'm very glad to hear that today morning Minister Pradhan announced that next year we will move to computer-based testing. So it should eliminate 95% of the problems anyway. Mm-hmm. Because this exam mafia is able to thrive and survive for one big reason, is that there are so many gaps on the paper movement, from printing to transportation to opening of papers to all those things. All that will get away, and this is, it'll be a big dent to exam mafia. Still, there'll be vulnerabilities, and I'm sure that NTA and its new avatar with the new leader on board will be able to take care of them.
2: And the recording of calls to a woman student at the Lucknow University brought to the fore her continued harassment by an assistant professor in the name of leaked examination papers. Among two angles pertaining to the case is the objectionable and derogatory phone conversation wherein undue favors were sought from a woman student, from a female student. Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
4: किस दिन मिलने आओगे आपके, तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए आपके।
5: सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था।
4: अच्छा, तो मिलने नहीं आओगे एक बार भी?
5: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में, फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
4: है। मतलब
6: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजापर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। प्रकरण की विवेचना ACP महानगर के द्वारा की जा रही है, अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं।
2: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The Political Voice is on the story.
7: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
8: चुनौती है निश्चित रूप से, जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा।
2: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.